और दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत। आप सुनिए ये कार्यक्रम का आखिरी गीत और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आपका दिन शुभ हो।

0: चर्चा की और उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति मुसुनुरु में भारत के पहले गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का संकर बीज का विमोचन करेंगे। वे किसानों को सम्मानित भी करेंगे और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों तथा अन्य प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 27 अगस्त तक 4 दिवसीय जापान दौरे पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका की यात्रा करेंगे तथा जापान में भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक व्यावसायिक प्रतिनिधि शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गडेरी नदी की तेज धारा में 9 लोग फंस गए, जिन्हें पुलिस, एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बचा लिया। एसडीआरएफ के जवान तेज धारा के बावजूद नदी में उतरे और सभी 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचाव के बाद सभी की स्वास्थ्य जांच की गई और उन्हें सुरक्षित पाए जाने पर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से 26 अगस्त तक कर्नाटक के मैसूरू में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन जनजातीय भाषाओं के प्रलेखन, संरक्षण और पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देगा। इससे देशभर में जनजातीय संग्रहालयों और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मजबूती मिलेगी। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले अधिकृत देशों के जहाजों को अब तेहरान को सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने बताया कि इस शुल्क में समुद्री पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी। भारतीय महिला टीम FIH हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई है। दूसरे दौर के अंतिम मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India.
1: हमें ऐसा

कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपके हाथ कोई कीमती चीज थमा दी हो या बहुत जरूरी काम आपको सौंप दिया हो और कहा तुम संभाल लेना? अजीब सा गर्व होता है ना, और साथ में थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बीते हफ्ते हम भारतीय स्पोर्ट्स फैंस पर ऐसी ही एक जिम्मेदारी आ गई थी। जानते हैं ना कि नई दिल्ली का हमारा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन दिनों पूरे बैडमिंटन जगत के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि 19 साल बाद भारत को मौका मिला था BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का आयोजन करने का। मानो

0: सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये बैडमिंटन का त्योहार था। हर शॉट में रोमांच था। हर रैली में धड़कन थी। हर पॉइंट के साथ जुनून सातवें आसमान पर चढ़ता दिखता। किसी जश्न को यादगार बनाने के लिए सिर्फ मैदान सजाना काफी नहीं होता, कोर्ट पर खिलाड़ी चाहिए हैं, उनके साथ खड़े फिजियो और सपोर्ट स्टाफ चाहिए हैं, पर्दे के पीछे आयोजन की बारीकियों को संभालते लोग चाहिए हैं, दुनिया भर से आए मेहमानों के लिए मेहमान नवाज चाहिए हैं, और सबसे बढ़कर स्टैंड्स में उमड़ते वो दर्शक जिनकी तालियों से खेल में जान पड़ती है। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक विश्व चैंपियनशिप नहीं रहने दिया, इसे बैडमिंटन का उत्सव बना दिया। शायद इसलिए तो टूर्नामेंट के खत्म होने पर BWF की प्रेसिडेंट खुनयिंग लिस्वाड्रा टूल ने कहा,
1: What a week New Delhi has given us. India waited 17 years for this moment and India made every year count. The BWF World Championships 2026 have won praise from every corner of our sport. That praise belongs to people.
0: बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव संजय मिश्रा भी भावुक नजर आए।
2: हम ये सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे, ये मैं कॉन्फिडेंट था, हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि ये टूर्नामेंट हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इतना सक्सेसफुल होगा, इतने अच्छे से होगा, शायद इसकी हमको भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, साई की और BI की टीम की ये मेहनत था और इसका हमको ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है।
0: आकाशवाणी की टीम को भी इस जश्न का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला और रेडियो के जरिए हमने कोशिश की कि इसकी हर धड़कन आप तक पहुंचे, लेकिन उस धड़कन की असली रफ्तार तो कोर्ट पर उतरे खिलाड़ी ही होते हैं। 56 देशों से करीब 400 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आए, कई कीर्तिमान स्थापित हुए। भारत का प्रदर्शन भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाली ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी का प्रदर्शन सालों तक याद रखा जाएगा। आइए अन्य विजेताओं से आपकी मुलाकात कराते हैं। शायद इस टूर्नामेंट की सबसे बेमिसाल कहानी फ्रांस के खिलाड़ियों की रही। 2026 से पहले इस देश ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कोई मेडल नहीं जीता था, पर इस बार हेडलाइंस फ्रांसीसी खिलाड़ियों ने ही बटोरी है। मेन सिंगल्स में खिताब जीता एलेक्स लैनियर ने, फ्रांस के वो खिलाड़ी जिनकी भावनाएं अक्सर चेहरे पर नहीं उतरती, लेकिन कोर्ट पर उनका खेल रोकना नामुमकिन था। विक्टर लाई और कोडाई नारोका जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इन्होंने धूल चटाई और गले में स्वर्ण पदक पहन लिया।
3: I think it's definitely huge for our friends, definitely huge. Felt all the support about the fans. We also got all the support from all the staff behind. And I think definitely today was a day for French badminton and it was a day for the whole staff also. I mean, I didn't feel that I won for me today. Today it was for friends.
0: Women singles में दक्षिण कोरिया की आन से युंग का खिताब जीतना किसी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन अचंभा इस बात का है कि टूर्नामेंट के दौरान चोट से जूझती हुई आन से युंग ने एक भी गेम यानी एक भी सेट नहीं हारा। सेमीफाइनल में चीन की वांगजी ही के खिलाफ भले ही 1 घंटे 1 मिनट का संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन वहां पर भी सीधे सेटों में युंग ने जीत हासिल की और एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है। वो कहती है,
4: There are a lot of people is supporting me. I want to thank all of my fans supporting me. This keeps me going and that's giving me energy. So I'm so excited and very enjoy. I think it's support me. Yeah, cheering on me. This is my motivation. And I there are a lot of people, my team coach, head coach, my family, all fans, trainer, all supporting me. This is my keep going.
0: Men's doubles में चीन से आने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने मानो पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। सामने 2 साल पहले ओलंपिक चैंपियन बनी एरन चिया और सोवी यिक की मलेशियाई जोड़ी थी, जिनको फाइनल में 2 सीधे सेटों में मात देकर चीन की इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
5: And now, our men's doubles world champion 2026 from China.

वुमेन्स डबल्स में एक बार फिर दक्षिण कोरिया चमका। बेक और ली की जोड़ी ने चीन की टान और लियू की वर्ल्ड रैंक नंबर 1 जोड़ी को

0: 가지고 정말 감사하게 생각하고 선수로서는 정말 뛸 맛이 났던 것 같습니다.
1: She's saying that we are highly, you know, happy that after 31 years that our country has won a medal. They are very excited about the Delhi crowd that while playing each and every match, they were really excited that the crowd were cheering for them. And as a player, it's a really great honor for them.
2: मिक्स डबल्स में भी इतिहास रचा गया. टॉम गिक्वेल और डैफनी डेल रू की जोड़ी ने फाइनल में एक बड़ा उलटफेर करते हुए चीन से आने वाली फेंग और हुआंग की जोड़ी को मात दी और बन गए विश्व विजेता.
3: Yeah, we are really, really happy, really proud. It's amazing. Like 10 years ago, we no French player can thought about that. So it's amazing. We are really proud.
2: इसी के साथ इस विश्व चैंपियनशिप में फ्रांस ने 2 गोल्ड मेडल जीते. उनकी कोच टीना ने बताया कि कैसे जनवरी में हुए इंडिया ओपन का अनुभव उनके सभी खिलाड़ियों के काम आया.
4: I'm very, very happy, of course, and happy that the work that we've been doing is paying off on the right time. We had the World Championship as a number one goal for the year. We worked specifically on playing in this hall because we had already tested it in January. So we worked on how to improve the areas that we needed to be better in.
2: अब गौर करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर. शुरुआत ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी से जो सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी. विश्व रैंकिंग में 39वें पायदान वाली इस जोड़ी से उम्मीदें ठीक ठाक प्रदर्शन की थी, लेकिन कोर्ट पर जिद, जुनून और जज्बे से भरा खेल दिखाते हुए इस जोड़ी ने वुमेन्स डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया. इसके साथ ही एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ. 2011 से हर साल BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में कम से कम एक पदक जीतने वाले अब सिर्फ 2 देश हैं, बैडमिंटन का पावर हाउस चीन और दूसरा भारत. इस जीत पर और इसी हफ्ते अर्जुन अवार्ड मिलने की घोषणा पर ट्रीसा कहती हैं,
5: बीइंग इनटू दैट क्लब आई फील लाइक सो हैप्पी. देयर इज अ लॉट ऑफ जर्नी वी हैव इन फ्यूचर. आई फील लाइक दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. वी जस्ट नीड्स टू टेक दिस एज अ पॉजिटिव एंड इन अ कॉन्फिडेंस वे. आई फील लाइक दिस ऑल मोमेंट्स एंड गेटिंग दिस मेडल एंड इवन दैट अर्जुन अवार्ड दिस वीक व्हेन दे अनाउंस्ड, आई फील लाइक दैट आल्सो गिव अस सम अदर बूस्ट इन दिस टूर्नामेंट.
2: इसी श्रेणी में अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप्स खेल रही काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी भी थी जिन्होंने पहले राउंड में दमखम दिखाते हुए अपना मुकाबला सीधे सेटों में जीता था, लेकिन यूं कहें कि ड्रॉ ने उनका साथ नहीं दिया. राउंड ऑफ 32 में सामना हुआ बल्गेरिया की मजबूत गैब्रियला स्टोविया और स्टेफानी स्टोविया की जोड़ी से जिनके विरुद्ध उनको हार मिली.
6: इट वॉज प्रीटी ग्रेट एंड इंडिया में हो रहा है, हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है एंड वी हैड दैट प्रेशर, यू नो लाइक एवरीबॉडी हैज दैट होप इन अस दैट यू नो यू शुड विन एट लीस्ट फ्यू मैचेस एंड व्हेन वी केम ऑन कोर्ट वी वर नर्वस बट देन व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग वी केम इनटू द मोमेंटम वी फॉरगॉट एवरीथिंग एंड वी वर देयर.
2: मेन सिंगल्स में चर्चा का केंद्र लक्ष्य सेन होने वाले थे, लेकिन पहले ही दिन डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड रैंक नंबर 1 शी यू ची को हराने के बाद आयुष शेट्टी भारतीय बैडमिंटन के पोस्टर बॉय बन गए.
7: प्लेइंग वर्ल्ड नंबर 1 इज नेवर इजी, इट्स अ फर्स्ट राउंड फॉर मी एज वेल. आई वुड से इवन आई हैव नॉट सेटल्ड इन, बट आई थिंक इट वाज अ टफ वन फॉर बोथ ऑफ अस एंड देयर वर नो बी मोमेंट्स एज आई सेड, बट या हैप्पी टू पुल इट ऑफ.
2: उनके शुरुआती परिणाम मानो किसी सुनहरे सपने जैसे थे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 16 में आकर उनका ख्वाब चकनाचूर हुआ जब इंडोनेशिया के आलवी फरहान के खिलाफ उनको हार मिली.
7: डेफिनेटली अ लॉट टू लर्न, स्पेशली दिस मैच, अ टफ वन टू डाइजेस्ट एज वेल, बट वील गो बैक एनालाइज एंड या आई थिंक लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एज वेल फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, बट आई थिंक डेफिनेटली अ लॉट टू लर्न एंड अ लॉन्ग वे टू गो.
2: दूसरी तरफ लक्ष्य सेन राउंड ऑफ 32 में यूएसए के गैरेट टैन से हारे, जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी. वुमेन सिंगल्स में जहां टीनेज सेंसेशन उन्नति हुड्डा का सफर राउंड ऑफ 32 में खत्म हुआ, तो वहीं पीवी सिंधु ने मानो घड़ी की सुइयां पीछे ले जाते हुए अपने पहले दोनों मुकाबलों को एक तरफा अंदाज में जीता, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल में उनके सामने चीन की वांग जी यी की कड़ी चुनौती थी जिसको सिंधु पार ना पा सकी.
8: Sad about it. I should have converted that. That's how it is. That's how sport is. You lose a lot, you win a lot. I mean, when you lose, you need to deal with it and bounce back stronger from your mistakes. I think that's how it will be and it should be. Thoda aur patience rehna tha mere side se. Bahut acha chal raha tha. Game 1, game 2 aur game 3 bhi bahut equal chal raha tha. The last 3 points just changed the game is what I felt. I should have been a little patient.
2: Men's doubles mein MR Arjun aur Hariharan Amsa Karunan ki jodi round of 32 ke aage nahi badh saki, lekin chot ke baad vaapsi kar rahe रहे गोल्डन बॉयज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी सराहनीय प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। वहां इवेंचुअल चैंपियंस लियांग और वांग ने उन्हें

0: మారుతుంది.
1: వి ప్లేడ్ డీసెంట్, ఐ వుడెంట్ సే వి ప్లేడ్ బ్యాడ్, బట్ జాపర్ హమ్కో లగా కి హమే పాయింట్ మిలేగా, మిల్ నహీ పాయా, క్యూంకి దే వర్ ప్లేయింగ్ క్వైట్ అ సాలిడ్ గేమ్. అ లాట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ హమే లగా ఫినిష్ హో జాయేగా, వో ఫినిష్ నహీ హుఆ, ఔర్ కాఫీ అచ్చే సే ఉన్ లోగ్ ఉస్కో ఆఫెన్స్ మే కన్వర్ట్ కర్ రహే థే. థోడా డిసప్పాయింటింగ్ హై, బట్ ఐ థింక్ దట్ ఇస్ హౌ స్పోర్ట్ ఇస్.
0: మిక్స్ డబుల్స్ మే రోహన్ కపూర్ ఔర్ రుత్విగా గాడే ఏవం ఆసిత్ సూర్య ఔర్ అమృతా ప్రముథేష్ కే సాత్ భారత్ కి తీన్ జోడియా హిస్సా లే రహీ థీ, లేకిన్ కేవల్ ధ్రువ్ కపిలా ఔర్ తనీషా క్రాస్టో హీ రౌండ్ ఆఫ్ 16 తక్ పహుంచ్ సకే, జహాన్ ఏక్ బార్ ఫిర్ భారత్ కే ఆడే చీన్ ఆ గయా. కుల్ మిలాకర్ కై సకారాత్మక్ సంకేత్ దేఖనే కో మిలే. ఔర్ బతాతే హై పులేలా గోపీచంద్.
2: थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है कि थोड़े से क्लोज मैचेस हम लोग ने हारे हैं. विमेन सिंगल्स में दोनों मैच हम लोग काफी क्लोज हारे हैं, और मेन सिंगल्स में भी आयुष का पहला दिन बहुत ही अच्छा था, और द थर्ड डे वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिसअपॉइंट, बट ओवरऑल डिसेंट इन दैट सेंस. आई वुडन्ट बी टू वरीड अबाउट इट. सम डेज दीज थिंग्स डू हैपन, बट द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई एम होपिंग दैट, और द एशियन गेम्स आई एम होपिंग फॉर बेटर.
0: कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनके लिए ये सफर सिर्फ कोर्ट तक नहीं था, ये अपनी जड़ों तक लौटने का एक खूबसूरत बहाना था. दुनिया के अलग अलग कोनों में पले खिलाड़ी इस बार सिर्फ भारत खेलने नहीं आए थे, शायद अपनी मिट्टी को थोड़ा और करीब से महसूस करने आए थे. जैसे यूएई का प्रतिनिधित्व करने वाली खान बहने माइशा और ताबिया.
3: तो मेरी मम्मी मुंबई से, पापा मध्य प्रदेश से, तो वो लोग जॉब के लिए यूए में आए थे, तो हम लोग बॉर्न ब्रॉट अप यूए में है, स्कूलिंग सब उधर ही करा है, लेकिन अभी थोड़े साल पहले यूए को रिप्रेजेंट करना शुरू करा है. इससे पहले स्टेट नेशनल सब इंडिया में एमपी की तरफ से खेलते थे.
0: उसी देश के झंडे के नीचे वुमेन सिंगल्स में खेल रही थी प्राकृति भारत.
4: I'm from Tamil Nadu, but I was settled in the Gulf. I live in Dubai right now, and I've joined the national team over there, and I've been playing for a year and a half now, representing UAE.
0: Alwar mein janmi Ishika Jaiswal ne United States of America ka pratinidhitv kiya, aur round of 16 ke liye qualify bhi kiya.
5: So, I'm from Alwar, Rajasthan, and I was born here, so I'm still an Indian passport. Yeah, I frequently come here, all my family's here. There's a lot of Indians in our academy, and but now you'll be seeing a lot more Indian.
0: मेडल आए, कुछ उम्मीदें टूटी और कुछ नई उम्मीदें जन्मी, लेकिन सबसे बड़ी जीत शायद ये रही कि बैडमिंटन ने एक बार फिर सबको एक साथ ला खड़ा किया. भारत अभी इस खेल की महाशक्ति नहीं, मगर मंजिल की ओर बढ़ते कदम साफ दिखाई दे रहे हैं, और जब कदम बढ़ते रहें तो सपने भी बड़े होते रहते हैं. इन सपनों के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया. आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आप सभी का दिल से आभार. BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के हर दिन की डिटेल्ड रिपोर्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं. प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी के साथ मैं दर्पण टिकिया.

वेल, तो ऐसा तो होता है ना कि लवयापा हो जाता है और हम कुछ सोचते हैं और कुछ और हो जाता है. वेल, कभी कभी यू लगता है कि वी शुड टेक सम टाइम टू स्टेप बैक एंड रिफ्लेक्ट. वेल, इस डिजिटल युग में चलना किसी बारूदी सुरंग से कम नहीं है. वेल, नेविगेटिंग दिस डिजिटल एज फील्स नो लेस देन वॉकिंग अक्रॉस अ माइन फील्ड, स्ट्रगलिंग विथ फॉलोअर काउंट्स, वॉचिंग पीपल अपलोड्स, हाईलाइट्स, रील्स ऑन देयर सोशल मीडिया. ये इतना कुछ कर देता है जहाँ पे लगता है कि यार क्या वाकई में इनफ इन लव, करियर एंड लाइफ. वेल, ये फीलिंग्स बहुत सारी फेमिलियरिटी लेकर आती है. जहां पर हम वैलिडेशन की बात करते हैं, वहीं पे इंक्रीजिंग फॉलोवर्स, लाइक्स एंड कमेंट्स के आसपास ही अनकॉन्शियसली हम घूमते ही जाते हैं. वेल, पॉपुलैरिटी और जो सक्सेस है उसका डेफिनेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है. कहते हैं कि कोई कांस्टेंट एक्सपोजर जितना दिखाएगा, जितना अपडेट रहेगा, जितना फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहेगा, वो बहुत सारी चीजों को ट्रिगर भी करता है. वेल, समझेंगे इन फीलिंग्स को, इन भावनाओं को, और हाँ, लोगों के साथ अपने आप को समझने के लिए. मिसिंग फैक्टर तो सबके साथ है. वेल, वो दिन की शुरुआत हो या दिन का खत्म होने का वक्त हो, सुबह हो या रात हो, लेकिन वो जो फीलिंग थॉट्स है वो तो बरकरार है. तो वेल, हम कहते हैं ना कि हाँ, वी आर द वर्ल्ड. तो वो वर्ल्ड कहाँ तक है और कितने तक है, वेल, इस गाने में बताया गया. तो आप बने रहिए आपकी जमीला के साथ, सुनते रहिए वेस्टर्न म्यूजिक.

Well, absolutely hung up. Stepping back and pausing allows us to have a to an opportunity to clear the mental clutter. अगर हम देखेंगे bigger picture, तो daily actions and goals and everything actually कहीं ना कहीं हमें दबा देती है ना? हम burn out हो जाते हैं, personal clarity नहीं रहती है. But if we just have a pause and reflect, तो yes, we could reset our energy. Check the direction, what is the actual values, कौन से करंट पाथ है, एंड थोड़े बहुत है ना बिजी वर्क्स को ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक नो माइनर टास्क, मेजर टास्क डू नॉट एड रियल मीनिंग. एक्चुअली छोटी छोटी चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं है, बट देन हम उसके ऊपर इतना सोचते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं कि पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. लर्न फ्रॉम द पास्ट, तो हाँ थोड़ी सी गलतियों को समझेंगे, उसे रिपीट नहीं करेंगे. तो ये पॉज एंड रिफ्लेक्ट बहुत ज़रूरी है आज के डिजिटल एरा पे, बिकॉज यहाँ पर मतलब प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन होता है. वी जस्ट गो फॉर अ वॉक एक 10-15 मिनट्स के लिए, अपने फोन्स को, डिस्ट्रैक्शंस को, सबको दूर रखते हुए, तो हमें अपने आप की वैल्यू समझ में आती है. इट्स अ सिंपल जर्नल की तरह हम अपने आप को समझ सकते हैं. प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, ड्रेनिंग ना होते हुए, एनर्जी को खत्म ना करते हुए, इफ यू स्पेंड फ्यू मिनट्स विद आवरसेल्फ, तो अपना माइंड भी एक्टिव रहेगा और थोड़ा बहुत से है ना सेटल डाउन हो जाएंगे. इतनी भागम भाग कि भाई डेली रूटीन, पर्सनल लाइफ, वर्क, सो मच ऑफ कंफ्यूजन. तो यहाँ पर हमें कभी ना कभी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉज देना जरूरी है टू मेक इट ईजियर एंड बैलेंस्ड. ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं. जैसे मैंने कहा था ना इनिशियली, नेविगेटिंग द डिजिटल एज फील्स नो लेस देन वॉकिंग अक्रॉस अ माइंड फील्ड. तो ये कोई बारूदी सुरंग में चलने जैसा ही है. तो जिस तरह से हम भागते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं रुकना जरूरी है, चाहे वो खूबसूरत सा गाना ही सही, या फिर रेडियो लगाते हुए, ट्यून इन करते हुए, 101 गाड़ी चलाते हुए अपने आप को महसूस करिए. चलिए अगला गाना मैं सुनाने वाली हूँ कनिका कपूर की आवाज में. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद.

वेल इट्स 10:48 एट स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब आपके जमीला के साथ और हमारा सेगमेंट चल रहा है वेर इन वी आर लिसनिंग टू वेस्टर्न म्यूजिक एंड बॉलीवुड सॉन्ग्स एज वेल। वेल तो चलिए अब बात करते हैं, जब हमने सेटबैक कर लिया है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर ही लिया है और गाने सुन ही रहे हैं, तो वाई नॉट कि ये एक मतलब एक आजकल आजकल कहा जाए, मैं ये नहीं कहूंगी कि दिस इज अ ट्रेंड विच इज हैपनिंग, बट देन इट्स लाइक डेवलपिंग अ क्रश एट वर्क इज कॉमन एंड नेचुरल। तो वेल आप लोग क्या सोचते हैं कि जिस तरह से हम सोचते हैं ना कि यार क्या दिख रहा है या क्या दिख रही है, तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये जो डेवलपिंग अ क्रश है, अगर आप को कोई पसंद आने लगता है, आप उस क्रश को किस हद तक ले जाते हैं? मैं बहुत ही हेल्दी वे में बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक चले जाए, बट इट इज़ अ जनरल हेल्दी फ्लर्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, या फिर है ना वेरी कॉमन वे ऑफ अप्रिशिएटिंग समवन, जहाँ पे कॉमन गोल्स हम लोग शेयर करते हैं। तो वेल इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे कि क्या वाकई में ये नेचुरल है या बहुत ही कॉमन है या अनकॉमन है। यार इसके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स हो जाती है वर्क प्लेस पे, तो वेल इट We'll talk about it. So before that, we'll just go with love sticks to with Westlife. तो बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

Well, it's 11:03 at स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब आपकी जमीला के साथ. वेल हम बात कर रहे थे डेवलपिंग अ क्रश एट वर्क इज कॉमन एंड नेचुरल बट इन द रॉन्ग हैंड्स यस इट कैन कॉम्प्लिकेट मोर देन जस्ट इमोशन. काम पर चीजों को छुपा कर रखना मुश्किल तो होता है, खासकर कॉरपोरेट सेटअप पर जहां पर हर कोई देख रहा है कि भाई चल क्या रहा है. वेल, इन बातों पे मजेदार और रोमांचक वर्जन्स रहते हैं, देखने वाले सुनने वाले. तो ये जो है ना बैलेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है. ये रोमांचक इसलिए हो जाता है, इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि है ना आसपास लोगों को बहुत सुकून देता है बिकॉज गॉसिप होती रहती है. यहाँ पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रहती है, लेकिन हाँ छोटे छोटे जो इमोशंस बातें या फिर बातों को बनाना और इन सबको एक तरह से सोचना, मतलब कि एक है ना मजेदार अंदाज में सोचना कहाँ तक सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा दिल फरेबी जरूर बन जाता है. तो वो जब फरेबी बन जाता है ये सचमुच में ऐसा लगने लगता है कि भाई ये क्या इन्फैटुएशन है, लव है या फिर कुछ और ही है जिसका कोई कोई टैग तो है नहीं, बट समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है. वेल, आकर्षक की बात की जाए तो हाँ बहुत सारी बातें हैं जहां पर हम समझते हैं अपने आप को कुछ और है लेकिन लोग कुछ और समझ बैठते हैं. तो चलिए इस गाने से शुरुआत करते हैं छोटी छोटी बातों का ये खुलासा. बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद.

जी हाँ, जो हल्का हल्का सा जरूर है। डेवलपिंग अ क्रश एट वर्क इज वेरी कॉमन एंड इट्स वेरी नेचुरल, कंप्लीटली नेचुरल। क्योंकि पता है, हम जितना वक्त उनके साथ बिताते हैं, सेम पीपल सेम गोल्स को शेयर करते हैं, और फिर पता है जो भी प्रेशर रहता है उसे हम इमोशनली हैंडल कर लेते हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट है वो शेयरिंग में ही तो है ना, तो इट्स लाइक नॉर्मल पार्ट ऑफ।

गेस्ट लाइक को वर्किंग. तो लेकिन होता क्या है यहाँ पे, क्या होता है, हम लोग रिपीटेडली कांटेक्ट करते हैं, फेसेस, बातें, फेमिलियरिटी, और एक सेफ जोन बन जाता है. जो प्रॉक्सिमिटी रहती है ना, वो बहुत ही नॉर्मलाइज हो जाती है. कलीग्स कहते हैं, बट देन हाँ, हम जिस तरह से टास्क को कंप्लीट करते हैं, काम को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा कम हो जाता है. हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ बस प्यार कर रहे हैं और वो क्रश चले ही जा रहा है, ऐसा नहीं है. काम पे भी एक सेंस ऑफ डीप क्लोजनेस रहती है. वहां पर ये नहीं है कि हाँ प्रॉब्लम को और बढ़ा चढ़ा के करें, लेकिन हाँ इसमें एक मैच्योरिटी की बात आती है कि दोनों किस तरह से मैच्योर बिहेव करते हैं. डेली टास्क हो गया, वर्क हैबिट्स हो गए, वो किस तरह से हैंडल करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वर्क हैज टू बी डन. वर्क प्लेस का मतलब ये नहीं है कि आप इश्क लड़ा रहे हैं, आप क्रश के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में ख्यालों में हैं और काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है. प्रोफेशनल बाउंड्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जो कल्चर होता है उसी से माहौल बनता है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम जिस दौर से गुजरते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल एरा है, यहाँ पर प्यार का इजहार करना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं. इट्स वेरी इजी. तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिससे आप अपने प्यार को इजहार कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर प्रोफेशनल बाउंड्रीज बहुत ज्यादा जरूरी है. पर्सनल डिटेल्स ज्यादा नहीं दिखाने चाहिए, ज्यादा नहीं जताने भी चाहिए, और एक फेस होता है जहां पर आपको समझ में आता है कि वो दायरे कहाँ पर है. ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो वर्क कल्चर को बहुत ही खराब करे, बल्कि उस वर्क कल्चर को समझते हुए एक सेंस ऑफ डीप प्रोफेशनलिज्म रहना बहुत जरूरी है. वर्क प्लेस में ये सारी चीजें कहते हैं कि कॉमन और नेचुरल है, बट देन एक अंडरस्टैंडिंग पे, एक मैच्योरिटी पे, तो वो जो है वो टिपिकली वो थॉट, वो प्रेशर को हैंडल करना जरूरी है. अदरवाइज अगर नहीं हो पाता है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि यू शुड बी आउट ऑफ इट दैट वन. कि ये जरूरी नहीं है कि आप अपने काम का माहौल खराब करें, आप अपने ऑफिस का माहौल खराब करें, और स्पेशली जहाँ पर इतने सारे कॉमन गोल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, तो उसे ये आपको थोड़ा सा हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इमोशनल अंडर स्टिमुलेशन एट वर्क, वैलिडेशन, और सिंपली कहा जाए कि ये मोनोटोनस रूटीन को किस तरह से डिस्टर्ब करता है, तो दिस एक्चुअली मैटर्स. तो वेल मैच्योरली आपको इसे हैंडल करना ज़रूरी है. इट्स 11:16 एट स्टूडियो क्लॉक, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद.

नमस्ते, हेलो, आदाब में, जहाँ हम बहुत सारे खूबसूरत गाने सुना रहे हैं और प्यार और इकरार की बातें कर रहे हैं। वेल, जब प्यार और इकरार की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो मेंटल हेल्थ और वेलबींग की बात की जाए, लिविंग लाइफस्टाइल का जो है उस पैटर्न की बात की जाए। कहा जाता है कि हम आज जिस तरह से हम अपने लाइफ को लीड करते हैं, सब में बहुत अच्छी खासी मेच्योरिटी है। एवरी वन अंडरस्टैंड कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है। दैट इज वेरी ऑब्वियस कि हाँ भाई, हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, हर कोई अच्छा रहना चाहिए चाहता है, खूबसूरत दिखना चाहता है। तो हर किसी के जैसे कि पैटर्न तो अलग होंगे, क्योंकि हम सब एक है, एक होते हुए भी एक नहीं है, क्योंकि हर किसी का बॉडी मेक अलग है। तो कई बार ऐसा होता है, जिस तरह से हम जब सुनते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, अडाप्ट करते हैं, इसमें कई लोगों का ये भी मानना होता है कि हम हर बातें सुनकर अगर हम करने लग जाएंगे तो भी हमारे बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि ओवर डूइंग कुछ भी, चाहे वो जिम हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, और खाना हो जाए या डाइट हो जाए, एनी पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं विच इज ओवर डूइंग, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज द रिस्क ऑफ ओवर डूइंग। तो ये जो कहा कहा जाता है ना कि अति बिल्कुल गलत है, तो जो अति हो जाता है वो गलत हो जाता है। तो हम लोग बहुत सारा डिस्कम्फर्ट लाने के लिए कहते हैं, हम हमेशा कम्फर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपका बॉडी अलाउ करता है? क्या हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? कहीं सुनी बातें, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, वो वीडियो ने ये बता दिया, वो एक्सपर्ट्स ने ये बता दिया, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर एक का बॉडी फ्रेम एक नहीं है। एक्सपर्ट्स की बातें हैं, बट देन स्टिल इसे कोई हार्म नहीं होगा। ये भी कहा जाता है कि किसी कोई अगर हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे 15 दिन तक तो हमारा बॉडी फिट हो जाएगा, या 3 महीने तक कर लेंगे। ये चीजों में हमें अपने आप को खुद समझना जरूरी है। जो डिस्कम्फर्ट की बात करते हैं, हम अपने आप को पुश करने की बात करते हैं, उसे हम इंटेंस वर्कआउट लेते हुए समझते हैं, जो सही नहीं है। भाई, मैं अभी रिग्रेस डाइटिंग करना शुरू कर दूंगा, अभी ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सारी चीजों में हम अपने आप ही फंसते जा रहे हैं। हम इन चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अगर हम हमारे बड़े बुजुर्गों के सामने ये करते हैं तो कहते हैं ना कि ये पता नहीं कहाँ की चौंचले हैं, क्यों कर रहे हो। लेकिन हाँ, जब बात आती है उनके लाइफस्टाइल की, वो किस तरह से फिजिकली फिट रहा करते थे, किस तरह से अपने बॉडी को मेंटेन किया करते थे, उनके बाल हो जाए, नाखून हो जाए, उनके चेहरे का ग्लो हो जाए, वो आज भी बरकरार है। हम अपनी दादी नानी को सुनते हैं कि भाई अभी भी फिट है, उनकी हड्डियां इतने भी स्ट्रांग कैसे हैं, तो हम सीधा कहते हैं कि खाना सही नहीं था, खाने का तौर तरीका सही नहीं है, अभी तो आजकल खाने में सब कुछ मिलावट है। जी हाँ, लेकिन फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। वेल, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ओवर डूइंग हमें बहुत कम करना है। हम जिम की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, योगा एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गया, एक्सरसाइज भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गया, इन बातों का ख्याल रखते हुए हमें करना चाहिए। वेल, अभी एक गाना सुनते हैं, हम इस गाने के बाद हम बात करेंगे कि वेल कि ये प्रोसेस ओल्ड बोन टिश्यूज के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी और किस तरह से हम रीमॉडलिंग करते हैं बात करेंगे। तो बने रहिए, अगला गाना मैं सुनाने वाली हूँ अरिजीत सिंह की आवाज में, लापता लेडीज का ये गाना।

And it's musically yours, sir. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब आपकी जमीला के साथ. well, जब हमने overdoing की बात की है तो overdoing में प्यार भी है. जहां पर अगर हम ज्यादा प्यार और लाड करने लग जाएंगे तो बंदा बिगड़ने के चांसेस है. well, हाँ हम वर्कआउट की भी बात कर रहे हैं तो overdoing workouts at gym is not correct. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एक्सपर्ट्स का एक ओपिनियन लेना जरूरी है. ओवर ट्रेनिंग कैन इंक्रीज द स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स और बहुत सारे इंजरीज हो गए. तो ये सारी चीजों का मसल लॉस हो गया. बहुत टेक्निकलिटी है लेकिन हाँ हम इसे समझने की कोशिश नहीं कर पाते बिकॉज वी फील दैट कि हाँ चलिए जाते हैं वहां पे कुछ चार पांच एक्सरसाइज कर लिया एंड द थिंग्स विल बी फाइन. नो इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं होता है. यहां पर एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ओल्ड बोन टिश्यूज का. कितने लोग हैं जो एक्चुअली अपने बोन हेल्थ चेक कराने के बाद में जिम ज्वाइन करते हैं. तो यहाँ पर अपने हार्ट बीट का एक काउंट चेक कर हार्ट इश्यूज कुछ है उन सब चीज़ों को मतलब कंप्लीट बॉडी का एक एनालिसिस होने के बाद ही हमें जिम जाना चाहिए. ये एक्सपर्ट्स का मानना है. हम चाहे वो मेल हो या फीमेल हो ओवर एक्सरसाइज इज नॉट एट ऑल करेक्ट. Too much of doing anything is not correct. So overtraining हो गया और कई लोगों को हाँ experts का ये pattern भी mention करना जरूरी रहा है कि वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे experts trainer है जो gym trainers है उन्हें overtraining syndromes रहता है. वो चाहते हैं कि आपसे ये कराए वो कराए और आपकी बॉडी को बिकॉज दे वॉन्ट टू अचीव जो वो पाना चाहते हैं वो हमारे बॉडी में देखना चाहते हैं. तो वो आपसे ये ट्रेनिंग कराएंगे ये एक्सरसाइज कराएंगे. तो ये सब चीजों में एक तो टाइम लगता ही लगता है और आप अपने बॉडी के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत इंटेंस है विच इज नॉट करेक्ट क्योंकि बाद में उसे रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा. सो देयर इज द डिफरेंस कि सेशंस हो गए या फिर है ना जिस तरह से इंजरीज हो गए मसल्स हो गए इन सब चीज़ों के लिए हमें एक प्रॉपर डॉक्टर को अप्रोच करना है. क्या आप उतने वेट लिफ्ट कर सकते हैं कितने घंटे आप कर सकते हैं कितनी रनिंग कर सकते हैं. यहाँ तक कि रनिंग और वॉकिंग के लिए भी हमें ओपिनियन लेना चाहिए डॉक्टर का क्योंकि बॉडी मेक हर किसी का अलग है. ये नहीं है कि नॉर्मल वॉकिंग कर लेंगे चले जाएंगे तो वहाँ पे भी नीज पे इफेक्ट पड़ता है किसी किसी लोगों के लिए अलाउड नहीं है. तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. डॉक्टर के साथ आप कुछ वक्त बिताए बेशक वो टाइम लगेगा बट देन वी हैव टू फिगर इट आउट कि वेदर इट रियली वर्क्स और नॉट. जस्ट किसी ने कहा कि यार तुम दोस्त ने कहा चल यार जिम चले जाएंगे चल यार वहां पे वर्कआउट करेंगे वहां पर ये करेंगे नो. यहां पर कंप्लीट नो आना चाहिए बिकॉज यहां पर रिकवरी करने के लिए बिकॉज हार्मोन्स ड्रॉप्स हो जाते हैं हार्मोन चेंजेस आते हैं किसी के हार्मोन स्ट्रेस के वजह से बढ़ जाते हैं कि कई रीजंस रहते हैं तो वहां पे ब्रेन बहुत ही फसी फील करने लगता है. बर्नआउट ब्रेन को समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है बॉडी के साथ. तो ब्रेन इतना फजी हो जाता है वो स्लो हो जाएगा पूरे दिन में बेशक आप उस जिम या एक्सरसाइज या फिर जो रूटीन है वर्कआउट टाइम है उस टाइम पे एक्टिव रहेंगे बट लेटर आवर्स में वो एनर्जी लेवल्स नहीं रहेगी. तो वेल एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि वी नीड टू अप्रोच अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड कि किस तरह की ट्रेनिंग लेनी चाहिए किस तरह का डाइट लेना चाहिए. सो नॉट टेकिंग एनी रिस्क कि किसी की ओपिनियन किसी की बात या फिर किसी का एक क्लिप देख लिया या रील देख ली और हम चले. नो स्ट्रेस वहां पे स्ट्रेन स्प्रेन्स बहुत फ्रैक्चर्स होते हैं.

वेल दोस्तों, जब हमने बात की है ओवर डूइंग की, तो वर्कआउट की बात की है, तो क्यों ना हाँ ईटिंग लेस की भी बात कर ले। जी हाँ, अगर हम अपने आप को कहेंगे कि हाँ कम खा लेंगे और ज़्यादा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारी कुछ आदतें सही नहीं है, जहाँ पर हम कहते हैं कि हाँ इतना क्यों खाएं, हम इतना कम वज़न जो कम करना है, कम करने के चक्कर में हम अगर कम खाना शुरू कर देंगे तो दिस विल नॉट फिक्स, ये हो ही नहीं सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारी कुछ आदतें हैं जो हमारा मेक है वो अलग है। बहुत से लोग कई चीज़ों में हम अपनी अपनी ज़रूरत को इग्नोर कर देते हैं, बॉडी की जो ज़रूरतें हैं उसे इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर अगर कम खाएंगे, ईटिंग लेस एंड मेकिंग मोर डजंट फिक्स इट आउट, तो ये फिक्स हो ही नहीं सकते। उसी तरह जब हमें यहाँ अगर स्ट्रेस है, तो अगर हम स्ट्रेस करना महसूस करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मोबाइल देखने की बजाय। अगर हम स्ट्रेस है, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, चलो हम स्ट्रेस है हाँ चलो थोड़ी एक मूवी देख लेते हैं, ऐसा नहीं हो। हमें कुछ ऑल्टरनेटिव लेना है जहाँ पर एलिमेंट्स इस तरह के हो जो हमें अपने आप से कनेक्ट करें। जिस तरह से अगर हम वॉक के चले गए, नंगे पैर चले गए, हम अपना फोन छोड़कर अगर नंगे पैर चले गए, या फिर है ना कहीं बारिश में भीग गए, अभी जिस तरह से बारिश हो रही है, तो उन बारिश की बूंदों में अगर अपने आप को महसूस करेंगे तो नेचुरल और पावरफुल पुश मिलेगा हमें। और हम बस नंगे पैर वॉक करने निकल गए, घास पे चले गए, पार्क्स में चले गए, तो ये मोबाइल और मूवीज डिजिटल से थोड़ा सा बाहर आ गए, तो हमें ये जो एलिमेंट्स है बहुत कुछ देंगे। तो हमारा जिस तरह से शरीर पांच एलिमेंट से बना है, तो उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो जहां पर हम अपने आप को महसूस करें, अपनी पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करें, वो ज्यादा मायने रखते हैं। तो जब इन मायनों में हम अपने आप को समझते रहेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। तो छोटी छोटी सी पहल, छोटी छोटी बातें, तो जहां पर सिंपली वे में हम अपने आप को निखारने लगते हैं। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं, अखिल सचदेव और सेठिया।

की आवाज में, एंड देन उसके बाद हम अरिजीत सिंह की आवाज में लव आजकल टू का ये गाना सुनेंगे। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। इट्स 11:58 स्टूडियो क्लॉक, और 12 बजे हमारे पास हिंदी की खबरें होंगी, और 12:05 में न्यूज़ इन इंग्लिश, जहां पर आप इंग्लिश खबरें सुनेंगे। इसके बाद मैं फिर आपसे जुड़ूंगी 12:10 में, जहां पे हम बहुत सारे गाने और नमस्ते हेलो आदाब के सेगमेंट में वो गाने जो हम कहीं ना कहीं याद करते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तो वो पुराने गानों के साथ साथ हम बहुत सारी गुफ्तगू भी करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

0: కళలు, సాహిత్యం, శాస్త్ర విజ్ఞానం, ప్రజాసేవ, క్రీడలు, ఇలా ఏ రంగంలోనైనా అపూర్వ అసాధారణమైన సేవలందించిన ప్రతిభామూర్తులకు భరతమాత అందించే అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్న.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आंध्र प्रदेश की यात्रा पर हैं। वे आज एलोरी जिले के मुसुनुरु पहुंचे। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में गवर्नमेंट पॉपकॉर्निका परिसर में भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज का अनावरण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा। देशभर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सहअध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापानी कंपनियों से भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और सुजुकी जैसी सफलता की कहानियां बनाने का आह्वान किया। जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जापान इंडिया बिजनेस कंसल्टेटिव कमेटी और भारतीय दूतावास के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत का युवा कार्यबल, बढ़ती अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास की महत्वाकांक्षाएं जापानी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 18वें ब्रिक्स अकादमी मंच का शुभारंभ कल लखनऊ में हुआ। ये मंगलवार तक रहेगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित इस मंच में ब्रिक्स देशों के शिक्षाविद, शोधकर्ता, विशेषज्ञ और नीति निर्माता एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। ईरान ने कहा है कि अधिकृत देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए अब सेवा शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि ये शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। देश भर में श्रावण माह के चौथे और अंतिम सोमवार को भगवान शिव के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा राज्य शिव भक्ति के रंग में डूबा हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: अंतिम सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए देवघर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए ड्रोन निगरानी, एआई आधारित कैमरे और डिजिटल हेल्पलाइन जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी मध्य रात्रि से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: भारतीय वाणिज्य दूतावास ने न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन में हुई गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। दूतावास ने कहा कि वे परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव

0: FM Rainbow 101.9 Musically Yours.
1: Yes, it's Musically Yours and it add colors to your life. तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद आपकी जमीला के साथ, और साथ ही साथ हम ढेर सारे गाने सुन रहे हैं और इट्स 12:11 एट स्टूडियो क्लॉक. और नमस्ते हेलो आदाब का ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम पुराने गाने सुनेंगे जिस गानों को हम याद तो करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन हाँ उसे सुनने की कोशिश नहीं कर पाते हैं. तो चलिए अभी मैं जो गाना सुनाने वाली हूँ, ये गाना एक दौर का बहुत ही फेमस गाना रहा और उस गाने में हाँ उस वक्त के लिए ये थोड़ा सा अंडररेटेड भी था, बट हाँ कईयों के लिए, यूथ के लिए बहुत सही रहा और किसी के लिए ये लाइफ टर्निंग का एक ऐसा वक्त था जो हर किसी को रिलेट कर पाता था. मैं बात कर रही हूँ फिल्म दिल चाहता है, 2001 में रिलीज हुई. और इस फिल्म में जिस तरह का कंप्लीट स्क्रिप्ट हो जाए, कास्टिंग हो जाए, डायलॉग्स हो जाए, बिल्कुल ऑन फ्लो, ऐसा नहीं लगता था कि किसी ने लिखा है और कोई कह रहा है, ये बिल्कुल अपने आसपास की कहानी लगती थी. लेकिन हाँ जिस तरह से इसको दर्शाया गया है, जिसे दिखाया गया है, उसके लिए तो कोई अदर वर्ड है ही नहीं. जहाँ पे तीन यंग लोग आकाश, समीर और सिद्धार्थ एक क्लोज फ्रेंड्स किस तरह से अपनी टेस्ट, पर्सनालिटीज और इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, लव के बारे में बात करते हैं, अल्कोहल के बारे में बात करते हैं और सेपरेशन के बारे, डिपेंडेंसी, इन सारी चीज़ों को किस तरह से दिखाया गया था 2001 में. और आज अगर हम बैठ के देखेंगे बैक से तो लगता है कि भाई यही सिचुएशन है आज की भी, है ना. कहीं ना कहीं हमें ये जरूर लगता है कि ये सिचुएशन अभी भी हमारे पास ही है, हम कितने भी वक्त गुजर जाए, लेकिन हाँ वो सिचुएशन को नहीं कहते. चलिए उसी फिल्म का एक गाना कि जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, इसका कोई सवाल, ये जो सवाल है इसका जवाब किसके पास है, किसी के पास नहीं है. लेकिन इस गाने के जो लफ्ज़ है, लिरिक्स है, इसे गौर से सुनिएगा, इसे महसूस कीजिएगा कि लिखने वाले ने जो लिखा है उस अंदाज को समझिए. जी जावेद अख्तर साहब की जो लिखावट है और उस संगीत में शंकर महादेवन जी, इन सब का जो पूरा कल्चर दिख जाता है हमें, है ना. महसूस कीजिए इस गाने को और मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए. नमस्ते हेलो आदाब.

वेकअप सिड भी थी, रॉक ऑन थी, और जाने तू या जाने में, ऐसे बहुत सारी फिल्में बनी हैं जहाँ पर एक मैच्योर कमिंग ऑफ एज स्पिरिट दिखाया गया है, जहाँ पर एक्सप्लोर टॉप फ्रेंडशिप है और ड्रामा भी है, लव भी है. तो वो जो कॉलेज एरा रहता है ना, उसमें से जब हम बाहर आते हैं, वो कॉमेडीज, वो यादें, वो दोस्तों के साथ प्यार, वो सारी फिल्मों में दिखाई गई हैं. तो उसी लाइन पर एक और फिल्म बनी थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो ये फिल्म का ये गाना तो बनता है. इस गाने के साथ हम, और कुछ कुछ यादें हैं वो मैं आपको गाने के बाद सुनाऊंगी, बहुत सारी किस्से हैं वो भी मैं सुनाऊंगी. तो बने रहिए आपकी जमीला के साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद.

वेल दैट वॉज एक जुनून एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. इसमें इमरान, जिन्होंने फरहान अख्तर का जो रोल था इमरान का, इसमें हमने देखा कि उन्हें स्काई डाइविंग से बहुत ही डर लगती है, बट एक्चुअली वो रियल लाइफ में वो सर्टिफाइड स्काई डाइवर है. और जो अर्जुन है, जिनका ऋतिक रोशन ने रोल प्ले किया था, वो सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर है, बट कैरेक्टर के लिए उन्हें पानी से डर लगता है. तो जो हमारे एक्टर है ना बॉलीवुड के, वो इतनी बखूबी तरह से एक्टिंग करते हैं कि रियल लगने लगता है. तो जस्ट सोचिए कि जिस तरह की स्टोरी है, जिस तरह का डायरेक्शन है, सोचा गया था कि भाई जो सर्टिफाइड है, जो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट है, उसे ऑन स्क्रीन डरता हुआ दिखाना कोई मामूली बात नहीं है. इसके लिए बुल फेस्टिवल, जहां पर मिड जुलाई में, वहां पर अगर लेट अगस्त तक था, वहां पर जाना, ये बहुत ही एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनता है. जहां पर हम सोचते हैं कि 3 घंटे की फिल्म है, लेकिन हाँ नहीं, इसमें बहुत सारा वक्त, टाइम, मेहनत और इमेजिनेशन. अगर हम सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? तो वो जो अचीवमेंट है, वो खुश रहने की, महसूस करने की, ये फिल्में ही दे पाती है. उसी तरह एक और फिल्म आई थी 2009 में, वेकअप सर. ये फिल्म भी एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म कहा जा सकता है उस दौर के लिए और इस दौर के लिए भी. जब हम कहते हैं कि वहां पर बस देखा था, खत्म हो गई कहानी, लेकिन जब आप आज की डेट में 2026 में बैठकर रिलेट करते हैं, तो भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं. एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ही एरोगेंट है, अपने फादर की बात नहीं सुनता है, वो हर बात पर, है ना, अपनी ही बात रखता है, क्रेडिट कार्ड बिल्स पे अपने खर्चे निकालता है. तो वो जो पार्टिंग है, फादर का बिजनेस है, ये सारे जो कॉम्बिनेशंस है ना, जो हम आज देखते हैं, वो हमें 2009 में ही हमें बता दिया गया था कि भाई ऐसे भी है. वैसे उस वक्त भी रहा करते थे, लेकिन हाँ, काउंट थोड़ी कम थी. वेल, जो मेरी मुझे सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है. नहीं, 2009 या फिर, है ना, पहले की बात की जाए तो थोड़ा कम काउंट रहता था. आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो बस पापा की कार ले लेते हैं एंड देन दिल हैव फन ऑन दैट वन, आराम से एंजॉय करते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स दूसरों को देते हैं, खुद की कमाई पे नहीं. तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो वो जो अनअवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी बताई गई है फिल्म को, वो इसमें दिखाया है कि वो एक कैरेक्टर है जहां पर बहुत सारा चुलबुलापन है, बहुत सारी मस्ती है और एनर्जी दुनिया भर की है, लेकिन जब उसे रियलिटी चेक होती है वो कैसे. तो दैट वाज वेकअप सेट. तो चलिए, मैं अगला गाना, एक तारा गाना, फिल्म का गाना सुना रही हूँ, वेकअप सेट का गाना एक तारा, जो मुझे भी बहुत पसंद है. तो वो जो तारा है, हम सब वो तारे हैं, लेकिन हमें अपने आप में चेक करना जरूरी है. रियलिटी चेक इज इंपॉर्टेंट. तो चलिए, अगला गाना फ्रॉम द फिल्म वेकअप सेट. तो बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद.

वेल दैट बस सोचा है रॉकस्टार फिल्म का ये जो गाना रहा है, सॉरी रॉक ऑन, रॉक ऑन वहाँ पर एक बैंड रहता है, उस बैंड पे जहाँ पर इतनी मेहनत, इतनी जो शिद्दत होती है म्यूजिक के लिए और साथ ही साथ अपनी थॉट्स के लिए. तो जो वो टाइम पे फिल्में थी जहाँ पर लोगों को ऐसे लगता था कि भाई बच्चे सिर्फ गाने वाने तो बजा रहे हैं, तो नहीं, उस मूवी में भी एक मैसेज था. जिस तरह से ये गाना है ना, सोचा है, क्या कभी आपने ये सोचा है, कभी वो सोचा है? तो ये जो फिल्में हैं, ये फिल्में सिर्फ हमें गाने ही नहीं बल्कि एक ऐसा मैसेज छोड़ जाती है जहां पर हमें महसूस करना होता है कि वाकई में ये फिल्म कहना क्या चाहती है. तो उसी लाइंस पर एक आई थी रॉक ऑन के बाद में, आई थी दिल चाहता, मतलब लाइक दैट वाज 2006 में, 2006 दिल चाहता है. उसके बाद के बाद में रंग दे बसंती, सॉरी रंग दे बसंती आई थी 2006 में. जब 2006 में आई थी, इट वाज लाइक अ फ्लैशबैक सीक्वेंस ऑफ 1947, हुआ क्या था, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स सब कुछ एक रूफ में. तो यहाँ पर जिंदगी जो टॉलरेट थिंग्स द वे दे आर, या तो आप उसे सहते रहे या फिर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज देम. तो ये दो ही लाइन थी, टॉलरेट करें या फिर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन चीजों को वो मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा जनरेशन अवेकिंग फिल्म रहा था इस फिल्म में, जहां पर लोगों को रौंदे खड़े हो गए कि रंग दे बसंती ऐसी फिल्म. और आज भी जब हम अगस्त के महीने में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो गाने को जब हम सुनते हैं, रौंदे खड़े हो जाते हैं. ऐसा लगता है कि क्या शिद्दत से फिल्म बनाई थी. अगर वक्त जिन्होंने नहीं देखा है, ये एक मस्ट वॉच फिल्म है. ये यंग जनरेशन के लिए का अ मस्ट सी फॉर यंग इंडिया है. तो ये जो रंग दे बसंती है ना, यहाँ पे इंडिया अवेकन्स, ये जो है, ये सब हर किसी को देखना चाहिए. तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाके देखिए कि ये फिल्म वाकई में हमें क्या देती है, क्या मैसेज देती है, क्या समझाना चाहती है. तो कहीं ना कहीं

So it's time at 101. आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, नमस्ते हेलो आदाब के सेगमेंट पे. तो वेल दोस्तों, इस सेगमेंट में हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं. द नंबर इज 0402323481 एंड 2323003 एंड 2970471. तो वेल आज का टॉपिक ये है कि आप ऐसी चाइल्डहुड ड्रीम, बचपन की कोई ड्रीम, बचपन की कोई मैं ड्रीम कहूँ, हाँ, एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसा सपना जो आज आप याद करते हैं तो चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है. तो अ चाइल्डहुड ड्रीम दैट मेक्स यू स्माइल टुडे. तो कॉल मी ऑन दिस नंबर्स 0402323481 and 2323003029704715.

0: वेल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद, आपकी जमीला के साथ, और हम फोन इन प्रोग्राम में हैं जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0402323482 एंड 2323003029704715। तो वेल, आज का टॉपिक ये है कि आप अपनी चाइल्डहुड ड्रीम के बारे में मुझे बताइए। जब आप आज याद करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, या फिर आपने अपने चाइल्डहुड ड्रीम को पा लिया है। वेल, कॉल कीजिएगा, मुझे बताइए। अभी हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो हेलो हेलो, हेलो
1: राधे राधे।
0: जी, बोलिए। राधे राधे, तो आपका कोई चाइल्डहुड ड्रीम?

0: बहुत लंबा समय के बाद आपसे बात हो रही है जमीला जी।
1: जी हाँ जी हाँ
0: और एक क्या है, थैंक्स फॉर हरजीत सिंह का सॉन्ग आप जो डाले,
1: जी
0: लापता लेडीज। उसमें एक डाउट है जमीला जी मेरे को,
1: जी
0: जो मेल सिंगर जो है सजना रे तेरा दिन रात, अरिजीत सिंह का है जो, फिर बाकी बाद में जो फीमेल का महबूबा है तन तो तू, वही सॉन्ग है क्या या डिफरेंट सॉन्ग है जमीला जी? वो
1: मैं समझी नहीं आपका डाउट।
0: मैंने एक हरजीत सिंह का सॉन्ग डाले
1: जी
0: लापता
1: जी
0: लेडीज
1: लापता
0: का,
1: लेडीज में। जी हाँ
0: उसमें क्या है, मेल सिंगर जो अरिजीत सिंह गाता है कि सजना रे दिन रात तेरी नहीं है बोल के वो मेल सिंगर गाता है, फिर
1: जी
0: बाद में फीमेल सिंगर का महबूबा ये तन तो तुझे को मरना पड़ेगा बोल के वो फीमेल सिंगर गाती है।
1: अच्छा हाँ हाँ
0: मतलब सेम सॉन्ग है या डिफरेंट सॉन्ग है
1: नहीं
0: वो?
1: नहीं डिफरेंट सॉन्ग है
0: हाँ वही, मतलब
1: जी जी डिफरेंट सॉन्ग
0: वो पिक्चर कौन सा है जमीला जी, आप अगर बोल सके तो बोलिए, नहीं तो नहीं।
1: जी। अभी तो फिलहाल हम टॉपिक के बारे में बात
0: अच्छा अच्छा
1: करेंगे।
0: अच्छा अपने बात करेंगे।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: क्या है, आप जो मतलब हमारा तेलुगु में जो आरजेस आते हैं वो लोग क्या करते हैं, हमें प्रेजेंटली हमारा ड्रीम्स में लेके जाते हैं,
1: जी
0: मतलब कॉल से ही, मतलब वो टॉपिक ऐसा पूछते हैं कि अगर आप इनविजिबल हो गए तो क्या करते, या नहीं तो अगर आप सेलिब्रिटी हो तो क्या
1: क्या
0: करते।
1: कहते
0: आप तो
1: हाँ
0: बचपन में लेके गए, हो सके तो आप भी प्रेजेंट में ड्रीम में लेके
1: डेफिनेटली
0: जाओ।
1: डेफिनेटली
0: और क्या है, आप जो टॉपिक पूछे
1: जी
0: बचपन में जो जमीला जी
1: जी
0: सुपरमैन का पिक्चर देख के अगर आगे उसी दिन, मतलब उस दिन अगर रात में सो गए,
1: हाँ
0: अब मैं भी वो ड्रीम में सुपरमैन बन जाता
1: बिल्कुल। तो वो
0: था।
1: अभी जो आपने कहा था कि हाँ जो बचपन की जो ड्रीम्स है ना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाए। जी हाँ, तो मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि जब हम ऐसे बहुत से ड्रीम्स रहते हैं जो हम चाहते हैं बचपन में।
0: तो
1: जी जैसे
0: वैसा कहने के लिए तो मैं मेरा ड्रीम में, मतलब साइंस में अगर आगे पढ़ के बहुत बड़ा हूँ या बहुत बड़ा रिसर्चर हुए तो अच्छा रहता था बोल के, मैं ऐसा ड्रीम
1: अच्छा,
0: मतलब
1: साइंटिस्ट बनना
0: बचपन में
1: चाहते
0: मेरा,
1: थे आप जी।
0: हाँ साइंटिस्ट बनना चाह रहा था जब बचपन में,
1: ओके
0: मगर मैं नहीं हो सका। आज मेरा बच्ची हो गई
1: देखिए
0: जमीला जी,
1: देखिए देखिए,
0: आज मेरा बच्ची जो है अब्रॉड में साइंटिफिक स्कॉलर है नो,
1: वेरी नाइस वेरी नाइस।
0: वो मेरा मतलब मेरा बहुत हैप्पी रहता है मेरा मेरा मन को।
1: वेल नाइस नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
0: थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे,
1: थैंक यू
0: बहुत
1: थैंक
0: दिन
1: यू
0: के बाद अगर आप आए
1: थैंक
0: तो
1: यू
0: थैंक
1: थैंक
0: यू
1: यू
0: वेरी
1: सो
0: मच।
1: मच फॉर कॉलिंग। जी हाँ, ऐसे अपने जो चाइल्डहुड ड्रीम, जैसे इन्होंने कहा कि इनका एक बचपन का ड्रीम था वो उनकी बेटी ने फुलफिल किया, तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं। हम बचपन में बहुत सारे चीजें सोचते हैं, कुछ हो जाती हैं, कुछ नहीं हो पाती हैं, कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, कुछ अरमान, तो हाँ मुझे ये बनना था वो बनना था, लेकिन नहीं बन पाते हैं। लेकिन हाँ, हम वो ड्रीम दोबारा जीते हैं अपने बच्चों के साथ। तो वो अगर ऐसा कुछ हुआ या फिर आपके भाई या बहन, मैं नहीं बन पाया तो वो बन पाए, तो जैसे इनके केस में इनकी बेटी ने उन्हों वो ड्रीम फुलफिल किया है। तो वेल, आप भी बताइए कि आपकी ऐसे चाइल्डहुड ड्रीम क्या थी जो आप आज बैठकर सोचते हैं तो हंसी सी आती है, एक स्माइल सी आ जाती है कभी, या फिर आप बन भी गए हैं, आपने वो ड्रीम फुलफिल भी किया हो। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो,
0: हरिओम,
1: जी हरिओम बोलिए सर।
0: मैं विलास पेरुरकर नल्लाकुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
1: जी
0: आज के विषय पर बोलना चाहूंगा। बचपन में मेरा एक स्वप्न हुआ करता था, वो ये कि मैं शिक्षक बनूं या प्राध्यापक बनूं। और उसके लिए कारण भी ऐसे ही था कि
1: जी
0: मेरे पिताजी प्राध्यापक थे और उसके पश्चात मेरे तीनों बहनें भी शिक्षिका के नाते कार्यरत थी,
1: ओके
0: तो मेरी भी ऐसी इच्छा थी कि मैं भी शिक्षक या प्राध्यापक बनूं। और
1: जी
0: जिसके कारण मैं क्या करता था कि मैं जब 10वीं में पढ़ता था और पिताजी घर पर जब बच्चों को पढ़ाते थे, किसी कारणवश जब पिताजी घर पर नहीं होते तो मैं उन बच्चों को पढ़ाता था।
1: यूजुअली हाँ ऐसा होता है। हाँ हाँ जी
0: तो उसके पश्चात जब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में आया, इंटर सेकेंड ईयर में आया, तब भी मैं यही करता था।
1: अच्छा
0: लेकिन आगे चल के ये जो मेरा स्वप्न था वो केवल स्वप्न ही रह गया है। मैं बाद में तो भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत था विकास अधिकारी के नाते, लेकिन ये मेरा जो स्वप्न है ये स्वप्न रह गया है। लेकिन और एक बात ये है कि आज मैं योग शिक्षक हूँ, मैं योग पढ़ाता हूँ, तो
1: अच्छा
0: मुझे लगता

0: कि कहीं ना कहीं मेरा जो स्वप्न था शिक्षक बनने का,
1: हाँ
0: वो किसी न किसी रूप में
1: जी
0: आज
1: हाँ
0: वो मैं पूरा कर
1: कर
0: रहा
1: पाए हैं
0: हूँ।
1: बिल्कुल।
0: प्रतिदिन आज मैं योग कक्षाएं देता हूँ और योग पढ़ाता हूँ, साथ साथ प्राणायाम भी करवाता हूँ, ध्यान भी करवाता हूँ।
1: जी बहुत
0: तो
1: बहुत
0: इसके कारण
1: धन्यवाद
0: मुझे
1: जी। हाँ हाँ सर
0: हाँ, जिसके कारण मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ कुछ हद तक क्यों ना हो मेरा स्वप्न मैंने साकार किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल
0: आभारी
1: करने के
0: हूँ।
1: लिए। जी हाँ, जैसे इन्होंने अपनी इन वे और इनडायरेक्टली हो जाए वो ड्रीम फुलफिल कर ली है उन्होंने। तो पहले आप भी मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी चाइल्डहुड ड्रीम है वेर यू फील लाइक कि हाँ भाई हुआ है, नहीं भी हुआ है, जो भी है जस्ट शेयर विथ मी ऑन द नंबर 0402323 0030, 2323482 एंड 2970475।

हमें कॉल कर सकते हैं 0402-323-20030 एंड 2323-4821 एंड 2970-47715 हमारे नंबर्स हैं। तो आप कृपया थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इस बीच हम गाना सुनते हैं। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।

0: वेल दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, और अभी हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम, कैसे
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: हैं मैडम आप?
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: दिन के
0: मैं
1: बाद आए।
0: हाँ हाँ जी मैं दूसरे मसरूफियत में थी। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया हूँ मैडम। मैं
0: जी बोलिए सर।
1: नरसिम्हा रेड्डी मैडम,
0: जी
1: प्रेमाती पेट से बोल रहा
0: जी
1: हूँ।
0: जी
1: वो बचपन से मेरा मेरे को पुलिस में करने का ड्रीम था मैडम। अभी
0: अच्छा,
1: पुलिस
0: ओके।
1: में जे एन एम का
0: हाँ
1: चलो ठीक है, वो तो मैं मेरा जो ड्रीम था वो ठीक कर लिया, सेलेक्ट भी हो गया था।
0: हाँ
1: और बिल्कुल नजदीक आने के बाद फिर मैं वो जॉब नहीं कर सका मेरा, वो
0: अच्छा।
1: अनस्टेबल, वो फैमिली का कुछ प्रॉब्लम, वो घर में कुछ नहीं, वो जॉब ठीक नहीं है वैसा कुछ बोलना।

0: वैसा रहता ऐसा रहता, बातों में आके मैं
1: तो
0: वो
1: थोड़ी
0: छोड़
1: सी
0: दिया।
1: तकलीफ होती है।
0: हाँ नहीं वो पूरा करने नजदीक होने के बाद बिल्कुल मैंने छोड़ दिया बिल्कुल उसको। उसके बाद में फिर एक 5 साल के बाद कोशिश करा, फिर वो हो नहीं सका मैडम। हाँ तो ऐसा मतलब नजदीक आके भी एक एक बार ऐसा भी हो जाता मैडम।
1: हो जाता है, होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो
0: थैंक यू
1: मच भगवान।
0: थैंक यू मैडम।
1: हेलो,
2: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जमीला मैडम
1: गुड
2: जी,
1: आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप?
2: श्रीनिवास राव मलक पेट माँ,
1: जी बोलिए।
2: आप बहुत दिन के बाद आए रहे हैं
1: जी जी जी
2: तो आपको ईदों का आपको मुबारक हो तो
1: बहुत
2: थैंक
1: धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
2: यू माँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पहले जो जो कॉलर थे वो कभी भी देखो आप, आज नहीं 6 महीने के नीचे देखो, साल के नीचे देखो, घुमा फिरा के बात करते हैं, मगर 250 टॉपिक जो देते उसके बारे में बात ही नहीं करते। हम बोलना नहीं चाहते
1: जी
2: मगर भी
1: जी
2: फिर आप कभी भी देखो,
1: जी
2: कौन
1: जी
2: सा भी देखो, अरे अपने को पूछो तो क्या है उसके बारे में बात करना पर छोड़ देना,
1: जी
2: ऐसा रहते ही नहीं। तो हम भी तो ज्यादा बातचीत के पर नहीं जाते हुए हम बोलते हैं,
1: जी
2: तो हमारा कहने का मतलब है मेरे को टीचर बनना बोल के बहुत ख्वाहिश था,
1: अच्छा।
2: बहुत बहुत बहुत कई तो स्कूलों में पढ़ पढ़ के क्या हुआ बोलते, अरे हॉलीडेज मिल जाती, अच्छा उधर इधर घूम सकते, वही आखिरी में मेरे को शादी होने के बाद मेरी बहन के गांव में घर गिर गया तो था, तो उसको मैं अच्छा करके वहां पर स्कूल बना के टीचर बन गया समझो, तो पूरा करस्पॉन्डेंस वगैरह पूरा करते
1: जी
2: हुए ये करते हुए मेरा जो ड्रीम था उसको मैं सेटिस्फाई कर लिया। मैं तो
1: हाँ चलिए, बहुत
2: चार
1: अच्छा
2: साढ़े
1: लगा
2: चार
1: सर।
2: साल वही रहा, फिर
1: हाँ
2: हमारे MLA साहब भी इधर रहे थे, तुम गांव में क्या रहते, आ जाओ इधर बहुत कमा लेंगे, आ जाओ बोल के बुला लिए, तो 4.5 में 87 83 से 87 तक वहाँ था, 87 में वापस आके फिर यहाँ पर दूसरे काम शुरू करे, वो बोला ये नहीं हुआ चलो पॉलिटिक्स में नकरे करते हुए घुमा रहे हैं, तो ऐसा हमारा जिंदगी बीत गई समझो। थैंक यू
1: बहुत
2: माँ,
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
2: हेलो,
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
2: तो थैंक
1: थैंक यू।
2: यू माँ, थैंक यू, वही सुन रही कि नहीं कि बोल
1: नहीं नहीं
2: मेरे
1: नहीं मैं
2: को
1: सुन रही हूँ।
2: बताया,
1: यस,
2: थैंक
1: बहुत अच्छा
2: यू
1: लगा
2: माँ,
1: आपसे
2: थैंक
1: बात
2: यू
1: करके,
2: वेरी
1: धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो,
3: मच। अस्सलाम वालेकुम जमीला जी,
1: वालेकुम सलाम जी, आपका
3: इरफान
1: नाम?
3: बोल रहा हूँ अमन नगर से। सभी सुनने वालों को भी प्यार भरा सलाम आदाब।
1: जी
3: अल्लाह आपको और सभी को खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, मेरी यही दुआ है हमेशा से।
1: जी आमीन। बोलिए, तो आपके कौन सी
3: जी
1: चाइल्डहुड ड्रीम है,
3: हाँ जी
1: बचपन की कौन सी ड्रीम है जो आप अगर
3: जी
1: याद करते हैं तो बस मुस्कुरा जाते हैं?
3: हाँ, मुस्कुरा तो नहीं जाता हूँ मैं, जो मुझे अफसोस होता है थोड़ा, क्योंकि मैं 3 साल की उम्र में ब्लाइंड हो गया था जमीला जी, मेरी आंखें निकाल ली। तो फिर उसके बाद तो 4-5 साल की उम्र में मुझे मस्जिद में मदरसे में भेजना शुरू किए मेरे पप्पा ने।
1: जी
3: तो मैं वहां से हाफिज कुरान बन रहा था। पहले दिन मुझे देख के उस्ताद बोले, हमारे बड़े भाई को बोले, अरे इसको क्या पढ़ाना भाई, बोले इसको दिखता नहीं कैसा पढ़ाऊं क्या पढ़ाऊं, बोले हमारे भाई इशारा करे, अरे पढ़ाओ ना, बोले भाई आया उन्हें, मैं रोने लग गया, मायूस हो गया।
1: जी
3: तो उन्होंने मुझे सूरह फातिहा पढ़ाए, लाइट लेके पढ़ाए उन्होंने, तो मैं उनको दूसरे दिन जाके सुना दिया।
1: अच्छा,
3: फिर उन्होंने सूरह बकर का एक रुकू याद करने को दिए, फिर वो भी जाके सुना दिया। तो बाद में उन्होंने अफसोस करे, अरे मैं गलत हो गया था, बोले मैंने गलत सोच लिया था, बोले बच्चे के बारे में। तो फिर मेरा हिफ्ज शुरू हो गया, मैं 5 पारे तक पहुंच गया, मैं
1: सर
3: हाफिज
1: बाकी
3: कुरान बनना
1: कॉलर्स भी
3: चाह रहा
1: वेट
3: था।
1: कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिएगा आप,
3: जी
1: मतलब
3: जी जी
1: आपका
3: जी
1: ड्रीम क्या था, मतलब आप क्या बनना चाहते थे?
3: हाँ वही, मैं हाफिज कुरान बनना चाह रहा था।
1: अच्छा, तो
3: वही
1: आप
3: बनते बनते मैं घर के कुछ हालात के वजह से रह गया, महरूम हो गया, 5 बार मदरसे में से जाके निकल गया मैं। तो जितना भी सीखा मैं उसको ही याद करता हूँ और उतना ही दूसरों को भी सिखाता हूँ।
1: जी
3: तो अफसोस भी होता है और खुशी भी होती है कि
1: खुशी
3: चलो
1: होती है
3: जितना तो
1: क्योंकि
3: सीख लिए
1: आप
3: उतने का हम अल्लाह से फायदा ले रहे हैं हम, और
1: बिल्कुल
3: दूसरों को भी सिखा रहे हैं।
1: बिल्कुल
3: तो थोड़ा खुशी भी होती है, अफसोस भी होता है, दोनों मिला जुला अंदाज़े हाफिज बनना चाह रहा था मैं,
1: जी जी
3: पुराने
1: जी
3: हाफिज।
1: जी जी जी वेल, मैं तो यही कहूंगी कि आपने बहुत कुछ पाया है, इतना आसान नहीं होता कि जिस सिचुएशन में आप रहे हैं और उसे हासिल करना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया कॉल
3: जी,
1: करने के लिए,
3: जितना भी
1: धन्यवाद।
3: मिला उतना अल्लाह का शुक्र है,
1: बिल्कुल
3: वही इलम बांटता रहता हूँ मैं, दूसरों
1: बिल्कुल,
3: को भी सिखाता हूँ और खुद भी पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र
1: बहुत
3: है।
1: शुक्रिया, शुक्रिया कॉल करने के लिए।
3: शुक्रिया जी,
1: जी हाँ, तो आप भी अपने चाइल्डहुड ड्रीम्स बताइएगा हमें। यार इस साथ कॉल करने के लिए नंबर है 0402।

0: 3 2 3 4 8 2 1 बेल, बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं तो मुझे एक कॉल कॉल लेना चाहिए। हेलो
1: अस्सलाम
0: हेलो,
1: वालेकुम जमीला मैडम,
0: वालेकुम
1: मैं
0: अस्सलाम
1: मुरली,
0: सर।
1: रेडियो शौकीन।
0: जी बोलिए।
1: मैं बचपने में हमारे मामू रेडियो मैकेनिक के काम पे डाले थे, तो मेरे को वही एक आरजू थी। मैं
0: अच्छा
1: जब देखता था रोज बनाने आते तो अरे मैं भी अच्छा रेडियो मैकेनिक, जब से मेरा जहन वैसे। लेकिन
0: हाँ
1: अल्लाह करम है, मेरा सपना भी पूरा और रेडियो मैकेनिक के साथ साथ रेडियो कलेक्टर भी बन गया मैं। अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पे।
0: जी जी जी
1: बहुत
0: जी
1: शौक था मेरे को, मेरे पास ऐसे ऐसे रेडियो रहना बोल के मेरे
0: हाँ
1: को बहुत इंटरेस्ट था। जब मैं काम करता
0: तो
1: था
0: आपके पास
1: छोटा था
0: डिफरेंट
1: गांव का।
0: वैरायटीज ऑफ रेडियोस हैं।
1: जी हाँ, मेरे पास करीब 200 के करीब रेडियो से,
0: बहुत खूब,
1: वॉल
0: बहुत
1: वाले
0: खूब।
1: रेडियो थे, ट्रांसिस्टर वगैरह। तो मेरी एक आरजू थी बचपन से, अच्छे गाने ये वो आते, तो अब छोटे थे काम पे डाल दिए थे। तो
0: जी
1: सीखते सीखते जो होता था बनाते बनाते, लोग जो आगे इज्जत से बात करते थे रेडियो मैकेनिक से, तो जो होता था मेरे को भी, अरे भाई रेडियो मैकेनिक की इतनी वैल्यू है, ऐसा इज्जत से बात करते लोग आगे। तो जमाने में रेडियो की बहुत बड़ी वैल्यू थी मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: अल्लाह का बड़ा करम
0: आज
1: है कि
0: भी
1: मैं,
0: रेडियो की बहुत अहमियत है।
1: बहुत बड़ी अहमियत है मैडम
0: जी
1: रेडियो के माने बहुत। जब वो जमाने में बाल रेडियो बनाना बोले तो कारीगरों के पीछे फिरना पड़ता था, बहुत
0: जी जी जी
1: जल्दी नहीं बनाते थे।
0: जी
1: शुक्रिया बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छा
1: आपकी
0: लगा
1: अच्छी
0: आपसे
1: बात
0: बात
1: की।
0: करके, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी हाँ, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి డిక్లరేషన్ ఫామ్ తో పాటు ఫామ్ 6, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 16 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా బిఎల్ఓకు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.

0: 101.9 and it's musically yours aur aap sun rahe hain Hello Rainbow aapki Jamila ke sath. Abhi hamare sath callers hain, unse hum baat karte hain. Hello. Hello. Hello. హలో హలో జీ ఆవాజ్ ఆ రీ హలో
1: జీ అస్సలాం అలైకుమ్
0: వాలైకుమ్ అస్సలాం
1: ఖుదా బాబా నే మీచే కైసే హై ఆప్
0: జీ మే అచ్చి హూం ఆప్ బతాయియే ఆప్ కైసే హై
1: హా ఠీక్ హై ఆప్కు బహుత్ అచ్చే కే బాత్ సునే బహుత్ అచ్చా లగా
0: శుక్రియా శుక్రియా తో బతాయియే కి ఆప్ క్యా కహేంగే ఆజ్ కి టాపిక్ కే బారే మే
1: బస్ హమారే దిన్ సున్ కర్ మత్లబ్ యాద్ కర్ కే ఖుషీ తో నే హోతీ బస్ అఫ్సోస్ హోతా కాజ్ हम भी और थोड़ा पढ़ लेते तो आपके जैसे आज ही रहते
0: नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी की तकदीर रहती है, किस्मत रहती है, तो उस हिसाब से. लेकिन हाँ, आप क्या करती हैं?
1: कुछ नहीं, बस अब घर पे फ्री है.
0: अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे.
1: था कि आज ये बनने की बहुत बहुत ख्वाहिश थी, वो भी बचपन से थी.
0: अच्छा,
1: पर नहीं हुआ. अच्छा सुनिए,
0: हाँ हाँ बोलिए.
1: जिंदगी तो तजुर्बा तो देती है, जिंदगी तजुर्बा तो देती है लेकिन मासूमियत छीन लेती है.
0: बहुत बहुत सही कहा आपने, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू,
1: सलाम, अल्लाह
0: हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी हाँ, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं. हेलो,
2: वालेकुम मैडम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
2: मैं पहले काल से कर रही हूँ, कबड्डी खेल रही हूँ, समझती हूँ. वो शौक था मेरे को बचपन से, मगर सोशल वर्क का खास कौम की खिदमत का वही है बचपन से अब तक मरे दम तक.
0: जी जी,
2: ये ख्वाहिश इस पे पूरी कर लेती हूँ.
0: बहुत बहुत
2: कबड्डी खेल रही हूँ, फर्स्ट कॉलर से मिला रही थी मैं आप. खैरियत क्या बोल.
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. शुक्रिया
2: शुक्रिया.
0: चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं. हेलो
3: हेलो, नमस्ते मैडम.
0: नमस्ते सर, आपका नाम?
3: मैं रविंदर बात कर रहा हूँ, सन सिटी से मैडम.
0: जी बोलिए.
3: मेरे को एक हफ्ता रेडियो में प्रोग्राम करने का था.
0: अच्छा,
3: तो मेरे को अचानक मैं 2011 में बिग बॉस में गेस्ट अनाउंसर काम करने का मेरे को मौका मिला मैडम.
0: ओह वेरी नाइस. हाँ,
3: अभी भी मैं देख रहा हूँ एफएम रेनबो भी मेरे को गेस्ट स्टार जगह मिलता बोल के सोच रहा हूँ मैडम.
0: वील डेफिनेटली, अभी हो सका तो जरूर कोशिश करेंगे हम. तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई मतलब.
3: आओ मैडम, और एक रेनबो में करे तो और एक काफी हो जाए.
0: बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
3: मेरी एक गाना प्ले करो ना
0: जी. अभी तो वक्त की पाबंदी भी है. कौन सा गाना चाह रहे हैं आप?

0: रफी साहब का ये मौसम बड़ा बेईमान है लोफर मूवी से मैडम
1: जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी अदरवाइज, हम हाँ मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये गाना प्ले करें हम।

हमने जो हमें इंस्पायर करती है, हमें लगता है कि कितना अच्छा बोलती है, वो जो डोमिनेशन रहता है उनको, वो जिस तरह से डोमिनेट करती है, जिस तरह से प्रेजेंट करती है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चा इंस्पायर होता है। और उनमें से हम भी बहुत सारे हैं जो चाहते थे कि हम टीचर बने, फिर बस थोड़ी सी समझदारी आती है तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, कुछ कुछ लोग टीचर्स बन जाते हैं क्योंकि वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन उनमें रहता ही है और वो चाहते हैं भी हैं और वो बन जाते हैं। और फिर अपना अपना रास्ता, अपनी अपनी किस्मत, अपने अपनी नसीब, अपने अपने मार्क्स लेते हुए जो आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वेल, आप भी, इट्स 1:41 एट स्टूडियो क्लॉक, तो अभी कुछ ही मिनटें बाकी हैं जहाँ पर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि जहाँ पर आपने सोचा था और हुआ नहीं हुआ, वो बात की बात है, किस्मत की बात है, लेकिन हाँ, जब आप बैठते हैं, सोचते हैं तो थोड़ी सी स्माइल आ ही जाती है चेहरे पे। इसमें उदासी की बात नहीं है कि हाँ ऐसा क्यों नहीं बन पाया। तो कॉल कीजिएगा, नंबर है 0402323003023234821 एंड 2970471।

0: Biryani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani. It's a feast for your ears.
1: Jashne Hyderabad. Savor the city's soul.
2: Well, it's 1:45 at studio clock aur aap sun rahe hain Akashvani Hyderabad. Ji haan, to hamare sath ek caller hai. Hello.
3: Purva Karao.
2: Ji sir, boliye. हेलो,
3: कैसी है आप?
2: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
3: बहुत बढ़िया है
2: जी. तो आज की टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे? हेलो, आज उनका कॉल कट हो गया. वेल, एक और कॉलर से बात करते हैं. हेलो
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमीला जी.
2: वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम मैडम?
4: मेरा नाम मुमताज है
2: जी. बोलिए
4: जी. पहले तो शेर खान भाई आपको सलाम करी, मैं भूल गई बात में.
2: जी
4: आवाज कम आ रही जमीला जी आपकी,
2: अभी आ रही है?
4: हाँ अभी आ रही है
2: जी. बोलिए.
4: अभी तो मैं शेर खान भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ. 5 पारे पड़े बोले
2: जी,
4: बहुत उनको बहुत बहुत मुबारक. और टॉपिक के बारे में तो मैं कुछ वक्त पे मैं बहुत मायूस थी, इसी के सहारे होके
2: जी
4: अभी मैं अभी खुद की जिंदगी जी रही, जो भी जैसा भी है जितना भी है अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ. बस कुछ सुकून में हूँ
2: जी,
4: बस यही था, यही खुशी थी मेरे को अपने आप से, अपने हज में अपने हिसाब में रहना होकर.
2: बस
4: अल्लाह ताला उस मुकाम पे रखे, बस अल्लाह का भी शुक्र अदा करती.
2: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग.
4: थैंक यू, थैंक यू.
2: जी हाँ, हम जब एक ऐसी जर्नी पे निकलते हैं जहाँ पे थिंग्स कभी अपने फेवर में हो जाए या फिर ना भी हो पाए, तो लेकिन हाँ यही सही है, सोचते हुए द बेस्ट व्हाट वी कुड गेट इट इज द बेस्ट. खुदा ने जो हमें दिया है वही अल्टीमेट है. उसके बाद में हमें कोई थॉट लाना ही नहीं चाहिए कि ठीक है हमने जितने भी हाथ पांव मार लिए, जितनी भी कोशिश कर ली, लेकिन हाँ अल्टीमेटली तो वही है जो हमारे पूरे कहते हैं कि इट्स ऑल प्लान. हम तो बस ऐसे ही परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं जो हम अपना रोल अदा कर रहे हैं. अदरवाइज एवरीथिंग इज बींग रिटन एंड एवरीथिंग इज बींग प्लान. सो वी आर हियर जस्ट टू प्ले एन एक्ट एंड दैट्स ऑल. चलिए एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं. हेलो हेलो
5: हेलो हेलो
2: हेलो
5: हेलो.
2: हाँ मैम बोलिए.
5: नमस्ते जनरल जी.
2: जी जी बोलिए.
5: हाँ मैं सुधा बात कर रही हूँ
2: जी. बोलिए
5: जी, टॉपिक क्या है जी?
2: जी टॉपिक ये है कि योर चाइल्डहुड ड्रीम वेयर यू कुड रिकलेक्ट एंड जब आप याद करते हैं तो आप मुस्कुराने लगते हैं.
5: मैं बचपन में स्किपिंग बोर्ड खेलती थी और कुड़ी बोर्ड के ना दो जने हाथ मिला के ऐसा गोल फिरते.
2: अच्छा
5: वो बहुत खेलते थे और स्किपिंग बहुत खेलते थे बचपन में.
2: तो वो आपका ड्रीम क्या रहा, चाइल्डहुड ड्रीम क्या था, क्या बनना चाहते थे आप?
5: मैं ड्राइंग करने का मेरे को बहुत शौक था.
2: अच्छा
5: वो बनने का बहुत था.
2: अच्छा तो आप आज के रिलेट
5: बड़े होते ही आंखों के नजर चली गई, वो सब नहीं कर सकी मैं.
2: It was nice talking to you. Thank you so much for calling.
5: Thank you.
2: Thank you. Thank you. जी हाँ, कई अरमान कई ख्वाहिशें और अल्टीमेटली अभी तो देखो मेरे पास वेनू भी आ चुके हैं, वेयर इज ही इज रेडी फॉर द नेक्स्ट शो, तो वो भी आ चुके हैं. और हमें वेनू भी बहुत मेहनत करते हैं. जब मैं देखती हूँ ना कि मैं भी कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होती हूँ, द हार्ड वर्क ही डज एंड एवरीथिंग, और जिस तरह से वो हम सबको एंटरटेन करते हैं. तो आई एम अ रेगुलर लिसनर ऑफ हिज शो ऑल्सो, सो ही इज जस्ट
6: बिसाइड. यस 100% फुल डोज एंटरटेनमेंट అన్నమాట. సో నాకు కూడా మా ఫస్ట్ నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది, మంచి యాక్టర్ మంచి హీరో మంచి స్క్రీన్ మీద కనిపించాలని, కానీ మైక్ ముందు వినిపించేసిన డ్రీమ్ కాస్త కొంచెం పక్కకి వెళ్ళిపోయినా ఇక్కడ మాత్రం ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది 20 ఇయర్స్ నుంచి.
2: ఇది ఐ అగ్రీ, కానీ సెలబ్రిటీ అయిపోయావు నువ్వు, చాలా ప్లేసెస్ వెళ్తావు, యు డూ సో మెనీ షోస్ ఆల్సో, సో నాట్ బ్యాడ్. నువ్వు ఎందుకలా ఫీల్ అవుతున్నావు, యాక్టర్ ఇంకా పెద్ద స్క్రీన్ లో రావాలి
6: అది అనమాట మైండ్ లో ఉన్నది. ఏమి ఏదో రోజు ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి, ప్రజెంట్ మాత్రం ఇది రన్ అవుతుంది. ఇది ఆల్ ఇండియా రేడియో, పెద్ద ఓషన్, పెద్ద సముద్రం, సముద్రంలో కూడా నేను ఇంకా ఇదితో ఉన్నాను కదా. సో అది 100%. పిల్లలు అప్పట్లో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, కారం కోస్తా కొంచెం ఎక్కువైతే మమకారం ఎక్కుతుందో, కూర ఎలా ఉంటుంది జస్ట్ నేను హైదరాబాద్లో ఇలాంటి వంటకాలు వడ్డించబోతున్నాను. మైషూర్ ఒంటరిగా ఉండటం అనేది చాలా మంది అంటారు, ఒంటరిగా ఉండడం వేరు ఒంటరితనం వేరు, రెండు ఇస్ డిఫరెన్స్ అనమాట.

1.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 10 सेकेंड्स हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियां चलाओ। 101.9 MHz पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आयशा बतुलफशां। सामईन, बज्म नैरंग में अब वक्त हो चला है बज्म नज्म का। आइए बज्म नज्म सिलसिले के तहत अमन अली साकिब का कलाम सुनते हैं।
1: आज के प्रोग्राम में मैं इल्म की फजीलत और जरूरत और तालीम निस्वान की अहमियत के एहसासात को उजागर करने वाले अशार आपकी समाप्त के लिए पेश कर रहा हूँ। समाप्त फरमाइए इल्म की अहमियत पर। इल्म इंसानियत की जरूरत भी है, ये निशातो मसर्रत की सरवत भी है। इल्म ही तर्जुमाने मशीयत भी है, इसकी तहसील बेशक इबादत भी है, इसकी तहसील बेशक इबादत भी है। इल्म ही जिंदगी का असासा है वो जिसमें कुव्वत हरारत करामत भी है, जिसमें कुव्वत हरारत करामत भी है। रज्म और बज्म की रोशनी आबरू, रज्म और बज्म की रोशनी आबरू, गोद में इसके साइंस और हिकमत भी है, गोद में इसके साइंस और हिकमत भी है। ये शराफत शुजात अदालत की जान, ये शराफत शुजात अदालत की जान, इसके दामन में पलती सियासत भी है, इसके दामन में पलती सियासत भी है। इसके बेटे हैं सब शायर फलसफी, इसके बेटे हैं सब शायर फलसफी, बेटियों में तो साइंस और हिकमत भी है, बेटियों में तो साइंस और हिकमत भी है। इल्म का शहर है सरवरे दो जहां, इल्म का शहर है सरवरे दो जहां, बाब इस शहर का मौला हजरत भी है, बाब इस शहर का मौला हजरत भी है। अपने हामिल को करता है ये सुर्ख रू, अपने हामिल को करता है ये सुर्ख रू, इसमें तौखीर व अजमत शराफत भी है, इसमें तौखीर व अजमत शराफत भी है। इसकी तासीर मुश्किल कुशाई का फन, इसकी तासीर मुश्किल कुशाई का फन, इसकी तनवीर हुस्ने फिरासत भी है, इसकी तनवीर हुस्ने फिरासत भी है। इसका खादिम है नोमान और बू अली, इसका खादिम है नोमान और बू अली, इसकी दासी फसाहत बलागत भी है, इसकी दासी फसाहत बलागत भी है। दूर दूर इससे रहती है सब तलखियां, दूर दूर इससे रहती है सब तलखियां, इसमें शीरीनी है और हलावत भी है, इसमें शीरीनी है और हलावत भी है। इससे आदम को अजमत मलक पर मिली, फरिश्तों पर, इससे आदम को अजमत मलक पर मिली, इसमें तामीर भी है और करामत भी है, इसमें तामीर भी है करामत भी है। दौलते इल्म जिस मुल्क को मिल गई, दौलते इल्म जिस मुल्क को मिल गई, उसको दुनिया की हासिल खियादत भी है, उसको दुनिया की हासिल खियादत भी है। मोतरिफ इसकी तारीख आलम भी है, मोतरिफ इसकी तारीख आलम भी है, इसकी मोहताज हर एक मिल्लत भी है, इसकी मोहताज हर एक मिल्लत भी है। शेरे ख्वाब गफलत से बेदार करता है ये, ख्वाब गफलत से बेदार करता है ये, इल्म का वलवला एक रहमत भी है, इल्म का वलवला एक रहमत भी है। हैदराबाद को जगमगाता है ये, हैदराबाद को जगमगाता है ये, सारी दुनिया में अब इसकी शोहरत भी है, सारी दुनिया में अब इसकी शोहरत भी है। इल्म सेहत व तंजीम और इत्तेहाद, इल्म सेहत व तंजीम और इत्तेहाद, इन्हीं अरबा अनासिर में इज्जत भी है, इन्हीं अरबा अनासिर में इज्जत भी है। अपना पैगाम साखिब सुनाता है ये, अपना पैगाम साखिब सुनाता है ये, अब जमाने को जिसकी जरूरत भी है, अब जमाने को जिसकी जरूरत भी है। सामईन मोहतरम, इल्म की उमूमी अहमियत और जरूरत पर आप अशआर समाप्त फरमा चुके हैं। अब मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि तबके निस्वान के लिए, खवातीन के लिए

सामईन, आप सभी सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। गीत सुनाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से प्लास्टिक के छोटे छोटे जर्रात खून की नालियों में इकट्ठे हो रहे हैं। हम आपको बता रहे थे कि इटली की यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक के दौरान मुहक्किकीन ने 6 अफराद पर तहकीक की। उन अफराद को 3 गिरोह में तकसीम किया गया, जिनमें से एक गिरोह ऐसा था जो हार्ट अटैक का सामना करने वाले अफराद पर मुश्तमिल था। दूसरा गिरोह ऐसे मरीजों का था जिनके दिल की शरियाने मवाद जमा होने के बाद सुकड़ चुकी थी, जबकि तीसरा गिरोह सेहतमंद अफराद का था। तहकीकारों ने जदीद लेबोरेटरी तकनीक को इस्तेमाल करके शरियानों में प्लास्टिक के नन्हे जर्रात के पाए जाने की जांच पड़ताल की और तहकीक में ये पता चला कि हार्ट अटैक का सामना करने वाले 84% मरीजों की शरियानों में प्लास्टिक के जर्रात मौजूद थे, जबकि दिल की शरियाने सुकड़ने वाले 40% मरीजों में भी प्लास्टिक के जर्रात पाए गए और 32% सेहतमंद अफराद की दिल की शरियानों में भी प्लास्टिक के जर्रात पाए गए। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि सेहतमंद अफराद या फिर ऐसे अफराद जिनके दिल की शरियाने मवाद जमा होने के बाद सुकड़ चुकी थी या फिर ऐसे अफराद जो कि हार्ट अटैक का शिकार हुए थे, इन तमाम की खून के शरियानों में प्लास्टिक के

प्लास्टिक के बर्तनों में या नायलॉन शीट्स में खाना रखकर कभी भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरारत मिलने पर अरबों माइक्रोप्लास्टिक जरात खाने में शामिल हो जाते हैं और फिर खून के जरिए हमारे शरीरों तक पहुंच जाते हैं। खाना गर्म करने के लिए मुतबादिल अशिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खाना जखीरा करने के लिए यानी खाना रखने के लिए भी हम प्लास्टिक के डब्बों या थैलियों के बजाय उसकी जगह मिट्टी या स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक के डब्बों या थैलियों में गर्म खाना या चाय डालना इंतहाई खतरनाक है, बल्कि हम कह सकते हैं कि यह हमारी सेहत को मुतासिर कर सकता है। प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीने के बजाय तांबे शीशे या स्टील की बोतलों में पानी पीना चाहिए। बच्चों की सेहत की हिफाजत भी इंतहाई जरूरी है। बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने और फीडर्स के बजाय शीशे या सिलिकॉन के बने हुए फीडर्स, कुदरती लकड़ी या फिर कपड़े से बने खिलौने इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स बच्चों की नशोनुमा को बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। तर्ज जिंदगी और माहौल में तब्दीली इंतहाई जरूरी है। पानी को फिल्टर कर पीना चाहिए। पीने के पानी के लिए अच्छे मेयार का फिल्टर इस्तेमाल किया जा सकता है जो पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक को साफ कर सके। नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे मसनवी धागों से बने कपड़ों के बजाय सूती या रेशमी लिबास को तरजीह दी जा सकती है, हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। इतना ही नहीं, मसनवी कपड़े धोने से भी प्लास्टिक के जो बारीक रेशे होते हैं वो हवा में फैलते हैं और फिर सांस के जरिए हमारे खून में शामिल हो जाते हैं। घर की बाकायदगी से सफाई भी इंतहाई जरूरी है। हवा में मौजूद प्लास्टिक के जर्रात से बचने के लिए घर को बाकायदगी से साफ करना चाहिए। सामिन, ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर हम अमल करते हुए प्लास्टिक के नन्हे जर्रात को हमारे जिस्म में दाखिल होने और खून की रवानी के साथ बहने से रोक सकते हैं। हालांकि प्लास्टिक तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। खाना रखने से लेकर खाने पीने की अशिया को तैयार करने के लिए हम प्लास्टिक इस्तेमाल करने लगे हैं। शीशे की बोतलों में पानी पिया जाता है। बच्चों के फीडर भी अक्सर प्लास्टिक के बने होते हैं। खिलौने भी प्लास्टिक के बने होते हैं। हमें चाहिए कि जितना हो सके प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें, क्योंकि ये प्लास्टिक के जरात जिन्हें हम इंतहाई मामूली समझते हैं, ये हमें हार्ट अटैक समेत कई बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशां। समय इन स्टूडियोज की घड़ी में 10:13 और 33 सेकंड्स हो रहे हैं। सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से कुछ बातें हम कर रहे थे। अब वक्त हो चला है हिंदी पुराने फिल्मी गीतों से सजे प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा सक। सामईन, आज गीत सुरीले गाते जा में हम एक ऐसी अदाकारा की बात करेंगे जिन्होंने 1960 और 70 की दहाई में अपनी दिलकश शख्सियत, खूबसूरती और जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर गहरे नक्श छोड़े हैं। वो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और मुख्तलिफ नौयत के किरदार अदा करने की सलाहियत रखती थी, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो अपने दौर की मकबूल तरीन अदाकाराओं में शामिल हो गई। वो अदाकारा कौन है, चलिए हम आपको बताते हैं। हम जिन अदाकारा की बात कर रहे हैं वो है सायरा बानो। सायरा बानो की पैदाइश 23 अगस्त सन 1944 को हुई। उनकी वालदा नसीम बानो 1930 और 1940 की दहाई की मारूफ अदाकारा थी, और वो भी अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। सायरा बानो का बचपन लंदन में गुजरा और उन्होंने इब्तदाई तालीम लंदन में ही हासिल की, और फिर सन 1960 में वो मुंबई आई और उसी दौरान उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। समयन, गीत सुरीले गाते जा में सायरा बानो के बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

सामीन, फिल्मी गीतों का सफर जारी है। गीत सुरीले गाते जा में हम बात कर रहे हैं अदाकारा सायरा बानो की। फिल्म साज व हिदायतकार शशि मुखर्जी ने सायरा बानो की सलाहियत को पहचान कर उन्हें अपने भाई सुबोध मुखर्जी से मिलने का मशवरा दिया। सुबोध मुखर्जी उन दिनों अपनी फिल्म जंगली के लिए एक नई हीरोइन की तलाश में थे और फिर कुछ इस तरह से सायरा बानो को फिल्म में काम करने का मौका मिला। उन्होंने सुबोध मुखर्जी की पेशकश कबूल की और फिल्म जंगली में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। सायरा बानो के फिल्मी करियर की पहली फिल्म सन 1961 में रिलीज हुई। फिल्म जंगली में उनके मुकाबिल अदाकार शमी कपूर थे। फिल्म में सायरा बानो एक मासूम और दिलकश कश्मीरी दोशीजा के किरदार में नजर आई। बेहतरीन मौसिकी और यादगार नगमों से सजी फिल्म जंगली जबरदस्त कामयाब हुई और फिर सायरा बानो को रातों रात कामयाबी मिल गई। इतना ही नहीं, फिल्म जंगली के लिए सायरा बानो फिल्म फेयर की बेहतरीन अदाकारा भी नामजद हुई।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। गीत सुरीले गाते जामे आज हम बात कर रहे हैं अदाकारा सायरा बानो की। सन 1961 में फिल्म जंगली के रिलीज होने और फिल्म के कामयाब होने के बाद साल 1963 में सायरा बानो ने मनमोहन देसाई की फिल्म ब्लफ मास्टर में काम किया और उस फिल्म में एक बार फिर उनके हीरो का किरदार शमी कपूर ने निभाया। साल 1964 उनके करियर का अहम साल साबित हुआ। साल 1964 में उनकी फिल्म आई मिलन की बेला रिलीज हुई, जो कि सुपरहिट साबित हुई और ये तमाम फिल्मों की कामयाबी के बाद सायरा बानो का शुमार बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में किया जाने लगा।

101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जासे और हम बात कर रहे हैं अदाकारा सायरा बानो की। साल 1968 में सायरा बानो की फिल्म पड़ोसन रिलीज हुई। मजाहिया फिल्म पड़ोसन काफी कामयाब रही। मजाहिया अदाकार महमूद की होम प्रोडक्शन फिल्म में उन्होंने एक ऐसी नौजवान लड़की बिंदु का किरदार अदा किया जिसे मौसिकी में काफी दिलचस्पी थी। फिल्म पड़ोसन के बेहतरीन नगमे और उम्दा मौसिकी आज भी काफी मकबूल है।

101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं और द प्रोग्राम नया रंग बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जासे और हम बात कर रहे हैं अदाकारा सायरा बानो की। साल 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म गोपी में सायरा बानो को पहली बार अपने शौहर दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिर दोनों की जोड़ी सगीना बैराग और दुनिया में नजर आई और सन 1975 में सायरा बानो को ऋषिकेश की हिदायतकारी वाली फिल्म चेताली की पेशकश हुई। चेताली का मरकजी किरदार उन्होंने अदा किया। कहा जाता है कि फिल्म नाकाम साबित हुई। साल 1976 में फिल्म हेरा फेरी रिलीज हुई और वो फिल्म उनके फिल्मी सफर की आखिरी हिट फिल्म साबित हुई। उस फिल्म में उनके हीरो के किरदार में अमिताभ बच्चन थे और फिर साल 1988 की फिल्म फैसला के बाद सायरा बानो ने फिल्मों से दूरी इख्तियार की।

101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी हैदराबाद है। गीत सुरीले गाते जा आप सुन रहे थे। स्टूडियोज की घड़ी में 10:55 हो रहे हैं। अब वक्त हो चला है प्याम शब का। लीजिए समाप्त फरमाइएगा जनाब नदीम अख्तर जैदी से प्याम शब।

जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूं। हम अक्सर दूसरों से लड़ने से ज्यादा अपने आप से लड़ते रहते हैं, अपनी गलतियों, नाकामियों, माजी के फैसलों और अधूरी ख्वाहिशों को बार बार याद करके खुद को कसूरवार ठहराते रहते हैं। नतीजा ये होता है कि इंसान

बाहर से मुस्कुराता है मगर अंदर से मुसलसिल एक जंग लड़ रहा होता है। जिंदगी का एक मुकाम ऐसा भी आना चाहिए जब इंसान अपने माजी को सजा देने के बजाय इससे सबक हासिल करे, अपनी गलतियों को तस्लीम करे और खुद को माफ करना सीखे। अपनी कमजोरियों को पहचानना जरूरी है लेकिन हर वक्त खुद को कमतर समझते रहना दुरुस्त नहीं है। जो गुजर गया उसे बदला नहीं जा सकता मगर आने वाले कल को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। अपने आप से सुलह का मतलब ये नहीं कि हम अपनी खामियों को नजरअंदाज करें बल्कि ये है कि हम अपनी खामियों को कबूल करके उन्हें बेहतर बनाने का हौसला पैदा करें। कभी अपने दिल से भी कहिए कि मैंने बहुत लड़ लिया, अब खुद को समझूंगा, जो खो गया उसे कबूल करूंगा, जो खो गया उसे कबूल करूंगा, जो बाकी है उसे संवारूंगा और अपने आप को माफ करके नई जिंदगी शुरू करूंगा। क्योंकि दुनिया से जीतने से पहले अपने अंदर का सुकून हासिल करना जरूरी है। जिस दिन इंसान अपने आप से सुलह कर लेता है उसी दिन जिंदगी की बहुत सी लड़ाइयां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार जो दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: సార్ ఫిరోజీ. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई. डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं.
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है. मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं. दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं.
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट.
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की. उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता

0: के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी सह आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्या के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
1: We are a young country.
2: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्त तरीके पर मंत्रिस्तरीय वार्ता में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। दो दिन के सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin today. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary ERS Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jayashankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over Prime Minister Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jayashankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
4: our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcome

0: is Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. आज सोमवार है और हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमें नंबर्स पर फोन कर सकते हैं 2331-4444. दूसरा नंबर है 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. और श्रोताओं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने और हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, धन्यवाद.
1: और सबसे पहले नजर आर्थिक सुर्खियों पर.
0: The benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 200 points, Nifty settles at 24,219. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 additional groups of countries, and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट आई. सेंसेक्स में लगभग 200 अंक की सुस्ती देखी गई, जबकि निफ्टी 24,219 अंक पर बंद हुआ. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 8 से 9 अतिरिक्त देशों के समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए प्रयास कर रहा है और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.

0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.22% यानी 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.14% यानी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तारित बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला. मिड कैप सूचकांक में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.3% की गिरावट आई. इससे पहले बाजार आज मामूली बढ़त के साथ खुले थे, लेकिन शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके. दोपहर के सत्र के दौरान बिकवाली का दबाव बढ़ने से दोनों सूचकांक नकारात्मक दायरे में चले गए और दिन भर बाजार दबाव में बने रहे.
0: The benchmark domestic equity indices ended in a negative zone today. The Sensex declined 172 points or 0.22% to close at 77,369. The Nifty dropped 33 points or 0.14% to settle at 24,219. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange showed mixed trend. The mid-cap 100 index added 0.1%, while the small-cap 100 index dipped 0.3%. Earlier, markets opened marginally up but failed to sustain their early gains. Both benchmark indices slipped into negative territory around the afternoon session as selling pressure intensified. The markets remained under pressure for the rest of the day.
1: सेंसेक्स सूचकांक की 30 में से 20 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट दर्ज हुई. सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.3% की गिरावट देखी गई. वहीं बजाज फिनसर्व में 1.2% और ट्रेंड में 0.9% की सुस्ती आई. इसके विपरीत टाटा स्टील में 1.9%, एचसीएल टेक में 1.3% और इंफोसिस में 0.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
0: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of 28 sectors registered losses. Among the top underperformers, insurance decreased 0.9%, PSU banks as well as housing finance shed 0.8%, and consumer durables fell 0.4%. In contrast, metal advanced 1.4%, telecommunications rose 1%, and commodities added 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,467 companies declined, 1,973 advanced, and 248 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ. शिशिर, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज कारोबार का इस सप्ताह का पहला दिन रहा और गिरावट के साथ इसकी हमने देखी जो बंद

0: जब बाजार बंद हुआ, गिरावट के साथ बंद हुआ, और पिछला सप्ताह भी जो था मिला जुला कारोबार हमने देखा था, उसमें क्या कहेंगे इस पर आप?
1: देखिए, बाजार को एक कहते हैं ना स्पष्ट दिशा की जरूरत है, और स्पष्ट दिशा मिल नहीं पा रहा है क्योंकि आज अचानक पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है। अब अभी हम लोग बात करें हॉर्मुज की, बात करें, अब वहां पर कहा गया है कि जो भी जहाज गुजरेंगे उनको एक शुल्क अदा करनी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है कि वो जो है वो सैंक्शन प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो है वो बाजार के अनुकूल नहीं है, जिसका असर आप देख रहे हैं कि बाजार आज आप देखिए, आपने जैसा शुरू में कहा कि बाजार की शुरुआत अच्छी हुई थी, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद उसको वो बनाए नहीं रख सका क्योंकि परिस्थितियां और जो कहते ना कि संकेत जो थे वो बहुत पक्ष में नहीं थे। इन्हीं सब का नतीजा ये रहा कि आज बाजार में हमें जो है गिरावट, हालांकि गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं, मामूली गिरावट है। एक महत्वपूर्ण जो आज तथ्य मुझे लगा कि है वो है आपका तकनीकी जो आईटी कंपनियों के शेयर हैं, उनमें हमने आज तेजी देखी। जो पिछले कुछ समय से लगातार ऐसा माहौल बन रहा है कि आईटी कंपनियां जो हैं वो पिछड़ रही हैं, एआई के मामले में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम काफी पीछे चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी आईटी सेक्टर में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी आती है, थोड़ी सी भी बेहतरी स्थिति देखने को मिलती है, तो उसका हमें फायदा देखने को मिलेगा। और जहां तक सवाल है वित्तीय सेवाओं की बात हम लोग करें, चाहे सरकारी बैंकों की बात करें या निजी बैंकों की बात करें, एनबीएफसीज की बात करें, वहां पर जो हमने गिरावट देखी है, अब वहां पर एक ये भी चिंता जो है वो सताने लगी कि हमारा इंटरेस्ट मार्जिन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में ब्याज दर बढ़ने की तो बात है, लेकिन फिलहाल जो पहली और दूसरी तिमाही जो है वहां पर हमारे ब्याज के ऊपर दबाव बना हुआ है, तो इसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी हमने गिरावट देखी। लेकिन आज का जो पॉजिटिव मैं पॉइंट कहूंगा वो है आईटी कंपनियों में बढ़त।
0: मुनाफा वसूली भी इसके पीछे कोई रीजन?
1: देखिए, मुनाफा वसूली अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, और अगर आप देखेंगे कि जो घरेलू वित्तीय संस्थाएं हैं जो पिछले कुछ समय से काफी निवेश कर रहे हैं, वो एक मौका जरूर तलाशते हैं क्योंकि उनको भी अपने, जिसको कहते हैं कि अपने बैलेंस शीट को बेहतर करना है। और एक बड़ी बात यह भी आप ध्यान में रखिए कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जो बीते कुछ समय से लगातार हमारे लिए सेलर बने थे, वो अब बायर की पोजीशन में है, तो ये दोनों चीजें हमारे लिए एक कह सकते हैं कि जब उनकी ज्यादा मुनाफा वसूली होती है तो घरेलू संस्थागत निवेशक ज्यादा निवेश करते हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक जब मुनाफा वसूली करते हैं तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की हमारी खरीदारी देखने को मिलती है। बाजार इस समय एक दिशा की तलाश कर रहा है, एक ऐसे संकेत की तलाश कर रहा है जो आगे बढ़ने में उसे मदद कर सके।
2: निफ्टी 24,000 शशि जी, व्हेन डू वी रिमेंबर दिस हैपनिंग फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, द निफ्टी काइंड ऑफ सेलिंग इन दैट वेरी नैरो जोन?
1: Of course, it's a very, after say a good gap, we are seeing this kind of narrow range or narrow bound trading. But I feel that currently the market is in a zone where there is no fixed direction. Today you will have one kind of movement in one particular sector, like defense sector. We always say that defense is something where there will always be interest. Today we have found that there was selling in the defense sector. Pharmaceutical sectors, we saw some kind of selling. We saw financial services, irrespective of whether they belong to private sector or the public sector. So the real issue is that what kind of direction we are looking for. Are we looking for any positive indications? Are we looking for any good policy direction? Are we looking for some kind of indication on the capital gain tax, if we talk about the institutional investor point of view? So these are some of the issues which we are looking for, and the market is looking for some kind of clarity on that, those issues. Unless there are some clarity, the market will always be in the range bound. And please remember that the global uncertainties and the global situations are still, we do not know which direction it is going on.
2: The global uncertainties and so on and so forth, the factors which are affecting the market. The direction you talk of, you know, it's been ubiquitous kind of, if we look at every sector, be it defense, pharma, IT, banking, finance, everywhere, it's just like kind of seesawing here and there. So for the benefit of our listeners, do you see any such sector, if we may say so, which can be kind of a standout, that is one, and of course, which can have that kind of an uptick in the coming days?
1: I think the financial services, despite one or two days of down, I think the financial services and especially the public sector banks are something.

0: उर्वरक और परमाणु सहयोग सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। शशि जी, विदेश मंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या मायने हैं इन तमाम बातों के?
1: देखिए, प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन की जो बैठक होनी है उसके लिए एक आधार तैयार किया जा रहा है इस बैठक के जरिए। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही, जो आपने एक पैराग्राफ में पढ़ा कि उन्होंने ज्यादा खाद की बात की, उर्वरक देने की बात की है। देखिए, जब से रूस और यूक्रेन वाली लड़ाई हुई उससे हमारे यूरिया की आपूर्ति के ऊपर और बाकी भी जो कंपोनेंट है उसकी आपूर्ति पर असर पड़ा और उसका असर यह हुआ कि उसके दाम काफी बढ़े। उसके दाम बढ़ने का नुकसान ये हुआ कि हमारा जो सब्सिडी पे खर्च है वो काफी बढ़ा है और कई बार ऐसी भी स्थिति आई कि जो 3,300 या 3,200 रुपए का जो पड़ रहा है उसे हम 250-300 रुपए या 350 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 10वें हिस्से में हम उसको बेच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए सब्सिडी का बोझ भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में रूस का ये कहना कि वो ज्यादा उर्वरक की आपूर्ति के लिए तैयार है वो काफी महत्वपूर्ण बनता है। कई क्षेत्रों में उन्होंने हमारे साथ रणनीतिक साझेदारी की है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री और उनकी मुलाकात के पहले का एक आधार तैयार हो रहा है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि वहां पर कुछ नए समझौते देखने को मिलेंगे।
0: और इस बीच हमारे आज के पहले कॉलर हैं शंकर भोपाल से, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। शंकर, सवाल पूछिए आपका।
2: मेरी आवाज आ रही?
0: जी बिल्कुल आ रही है, सवाल पूछिए।
2: मेरा सवाल सर, ये जो हमारे यहाँ चाइना से और मोस्टली चाइना से जो सामान आता है, फिनिश्ड गुड्स, कच्चा सामान नहीं, फिनिश्ड गुड्स, और उसको पे ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ा दी जाती जिससे हमारे देश में सामान बने और हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और इसी सिलसिले में अगर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के इंपोर्ट में कुछ रियायत दे दी जाए या जीरो ड्यूटी कर दी जाए तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी अपने आप, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट पे भी इंडिया में ड्यूटी है और कच्चे फिनिश गुड्स पे, तैयार सामान पे चाइना से ड्यूटी उतनी है जितनी समझ लीजिए दूसरे देशों से जो हमारे फ्रेंडली देश हैं उनसे, तो ऐसा क्यों? उन पर ड्यूटी बढ़ा दें तो अपने आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कम हो जाएंगे चाइना से और यहाँ बनने की तैयारी हो जाएगी।
1: शंकर जी, आपका सुझाव तो अच्छा है लेकिन इसकी एक कुछ कहते ना व्यावहारिक भी दिक्कतें हैं, क्योंकि आप किसी भी सामान पर जब शुल्क बढ़ाते हैं तो उसमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि उस देश के साथ जो भी आपका व्यापार है वो कितना हद तक प्रभावित होता है। तो जो भी आप कहते हैं कि आप वहां से आयात कर रहे हैं उसको आप और महंगा कर दीजिए, ये भी ध्यान में रखिए कि हम चीन से बड़े पैमाने पर कच्चा सामान आयात कर रहे हैं, जैसे आपका एपीआई है या फिर चिप्स हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कैपिटल गुड्स हैं। अब यदि उन सामानों पर यदि वो ड्यूटी बढ़ा देते हैं रेसिप्रोकल वे में तो फिर नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा। तो यहां पर एक व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए करना होगा और ये आप ध्यान में रखिए कि हमारे व्यापार का जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो किस तरीके का है।
0: आगे बढ़ते हैं, एशियाई बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3.1% लुढ़क गया और जापान का निक्केई 225 आज 0.7% नीचे आ गया। दिल्ली से हमारे अगले श्रोता हैं जो फोन लाइन पर, सतपाल। सतपाल जी स्वागत है, सवाल पूछिए।
3: सर नमस्कार जी।
0: नमस्कार
3: सर, आजकल जो लड़ाई का माहौल चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसको ऐसे कंसिडर करते हुए तो क्या लग रहा है कि फ्यूचर में क्या निफ्टी वगैरह कुछ बढ़ेगा? या आपने जो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप, इसके ऊपर बताइएगा कि कौन सा सेक्टर सही रहेगा?
1: सतपाल जी देखिए, दोनों देशों के बीच जिस तरीके के तनावपूर्ण स्थिति बने हुई है उसमें किसी भी तरीके की भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, क्योंकि हर रोज एक नई परिस्थिति हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं आज की बात करूं तो आज ईरान ने कहा कि वो जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है वहां से जो भी जहाज जाएंगे उनसे वो पैसा लेंगे, तो ये एक अलग अलग तरीके की परिस्थिति है। अब प्रश्न यह है कि बाजार को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बीते कुछ समय से हमने शेयर बाजार में थोड़ी एक बेहतरी देखी है। अब शेयर बाजार काफी हद तक लड़ाई की बातों को जो है वो हम ये नहीं कह रहे पूरी तरह से उसने डिस्काउंट कर दिया, दरकिनार कर दिया, अभी भी कुछ चीजों को हो। और मेरी हमेशा से राय रही है कि इस तरह की परिस्थितियों में अगर आप बाजार में आना चाहते हैं तो छोटे छोटे किस्तों में आप लार्ज कैप में आप पैसा लगाएं, और वो भी जब बाजार में एक गिरावट का माहौल बना हो वहां पर आप खरीदें छोटे छोटे किस्तों में, जब जब गिरावट आए इससे आपको क्या होगा कि आपकी लागत में

0: ड्रेजिंग का मौका मिलेगा और आपके लिए कुल लागत जो है वो कम हो सकेगा। तो मेरा सुझाव यह है, लार्ज कैप है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश करें जो डाइवर्सिफाइड फंड हो और डेट और इक्विटी दोनों का हो, बैलेंस फंड जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहां पर आपके लिए बेहतर विकल्प होगा।
1: नेक्स्ट कॉलर इज के शुक्ला फ्रॉम महाराष्ट्र। मिस्टर शुक्ला
2: जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा क्वेश्चन है कि अगले साल महंगाई लगभग 7% था, इस बार दो तीन महीने में लगभग 10-12% बढ़ गया, क्या इसका फुल पूरा कारण ये जो पेट्रोलियम का प्रॉब्लम है दूसरे कंट्री से आता है उसका, या फिर और कोई कारण है?
0: शुक्ला साहब, थोड़ा सा मैं क्षमा के साथ आपके आंकड़े को थोड़ा सही करना चाहूंगा कि खुदरा महंगाई दर जो है, अगर जो ताजा आंकड़े जो कि जुलाई के हैं, वो 4.5 के करीब में है। तो ये जो 10% की आपने बात कही है वो उचित नहीं है यहाँ पर उसको जिक्र करना। तो ये जो 4.5% है, इसमें दो तीन चीजों की महंगाई दर ज्यादा है। आप प्याज की बात कर लीजिए, चीनी की बात कर लीजिए, इसके अलावा हम सोने और चांदी की बात कर लें, और हमारे आपके घरों में जो लहसुन और अदरक का जो इस्तेमाल होता है, इसकी महंगाई दर काफी बढ़ गई है। तो हमारी थाली के बजट पर जरूर इसका असर पड़ा है, लेकिन कुल महंगाई दर यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं हेडलाइन जो इन्फ्लेशन रेट है, वो 4.5% के करीब में है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में जो दाम बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के, उसका असर जो है वो कुछ हद तक हमें जरूर देखने को मिला है, क्योंकि डीजल का जब हम कहते हैं कि डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे सामान की आवाजाही की लागत बढ़ती है और उससे महंगाई दर पर असर पड़ता है। लेकिन अभी भी जो 6% हमारे लिए महंगाई दर की सीमा होती है, जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में जो एक समझौता है, वहां पर हम नहीं पहुंचे। 4% से ज्यादा है तो वहां पर जरूर हमें सोचने की जरूरत होती है।
1: नेक्स्ट कॉलर इज सदबुद्धि फ्रॉम चेन्नई। वेलकम।
3: या हेलो सर, गुड इवनिंग टीम, मार्केट मंत्रा टीम।
1: गुड इवनिंग।
3: दिस इज रिगार्डिंग दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, रिसेंटली वी हैव इंप्लीमेंटेड इन गुजरात। What time it will take the effect and when we are going to lead in the semiconductor chips preparation, sir?
0: Sir, I think by 27, by the next year, we will be in a position to export also after meeting the domestic requirement. And there are other plants also which are coming into existence. 2 or 3 have already started production. So I believe by 27 and by 28, we will be in a better position in terms of the semiconductor, what you can call it as a chips.
1: Moving on, Iran has said that vessels from authorized countries transiting the Strait of Hormuz will now be required to pay service fees to Tehran. Iran's National Security Commission spokesperson, Ebrahim Rezai, stated that the fees will cover a wide range of maritime, environmental and logistical provisions. According to Strait broadcaster, this comes after the approval of the Article 3 strategic action to ensure the security and progress of the Strait of Hormuz plan. On the other hand, United States Treasury Secretary Scott Bessent is set to unveil a new package of sanctions against Iran tonight. And in the oil sector, the global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.6% down at $92.87 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 2.3% lower at $85.08 per barrel when reports last came in. Shishiji, Iran as well kind of throwing tantrums every day, today something, tomorrow something, day after something. Now this new fees coming into picture. We'll come to that, but in the meanwhile, we are joined in by our next caller, Sainath from Thane. Mr. Sainath.
4: Hello.
1: Yeah, Mr. Sainath.
4: My question is that the company jo dividend, DTA share dividend, wo 15H form senior citizen ko valid hai ki form number 121 kuch change ho gaya?
0: ये चेंज हो गया है, चूंकि आयकर कानून 2025 लागू हुआ है 1 अप्रैल 2026 से, तो उसके तहत आपको जो फॉर्म है, देखिए फॉर्म वही है, बस फर्क ये है कि अब वो एक नई संख्या के साथ है। तो जो आपने 120 121 की बात की, ऐसा ही कुछ संख्या है जो आपको भरना होगा, और जो आप

0: को डिविडेंड है, उस समय में आपके पास एक चिट्ठी भी आएगी कंपनी की तरफ से कि अगर आप उसके आपकी आय जो है वो कर की सीमा से कम है तो आप वो फॉर्म भर दीजिए, आपके डिविडेंड पर टैक्स नहीं कटेगा।
1: Yeah, Shishir ji, continuing with our earlier discussions, now Iran kind of trying to levy new fees from any country the vessels of any country which is transiting the Strait of Hormuz. Now, this is something which is of some concern, and also the state broadcaster says that approval of Article 3 strategic action is to ensure the security and progress of Strait of Hormuz plan. Now, this is something of some concern, and again we'll come to that. But we have been joined in by our new caller, Kaushik from Kolkata. Kaushik.
2: सवाल और एक बार बोलिए।
0: जी, सवाल पूछिए कौशिक जी।
2: हेलो।
0: हाँ कौशिक जी, सवाल पूछिए।
2: अच्छा सर, मेरा दो सवाल है।
0: जी
2: एक है, जो इन्फ्लेशन 4.5 का जो परसेंटेज है, इसमें कौन सी जो बारीकियां हैं इसमें देखी जाती हैं? क्योंकि एजुकेशन और जो आपका हेल्थ केयर सर्विसेज का इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा है, एक तो ये। दूसरा सवाल ये है कि आज ब्रेंट क्रूड का प्राइस फॉल किया है, फिर भी निफ्टी फॉल किया है, तो इसमें क्या इंटरलिंकिंग है ये समझ में नहीं आया आज।
0: कौशिक जी, पहला सवाल जो आपने महंगाई दर को लेकर के कहा है, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका महंगाई दर को लेकर के है वहां पर सोने और चांदी की कीमतों को लेकर के, उसके अलावा जो ताजा आंकड़े हैं उसमें प्याज की भी एक भूमिका रही है जिसकी कीमतों में हमने बढ़त देखी, लगभग 22% वहां महंगाई दर है, जबकि चांदी की महंगाई दर 100% के ऊपर है। आपने जो जिक्र किया शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, वहां पर महंगाई दर है लेकिन उस स्तर पे नहीं है जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा तनाव या चिंता लें। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा निफ्टी बनाम कच्चे तेल को लेकर के, इसका दोनों का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ये परिस्थितियां अलग थी जिसकी वजह से निफ्टी में आपने गिरावट देखी।
3: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट वाला सोना आज 1% के उछाल के साथ 1,62,154 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 0.5% नीचे आकर 2,45,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। शशि जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: थैंक यू शशि जी। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन। Benchmark domestic indices fall, Sensex slips nearly 200 points, Nifty settles at 24,219. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says India is negotiating free trade agreements with 8 to 9 additional group of countries, and global crude oil prices decline. That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
3: Namaskar.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
5: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम है हर श्रृंगार नहीं, जी हाँ, वो तो 10:30 था और अब 11:44 हो चुके हैं। और ये कार्यक्रम है आपका अपना मनपसंद गीत मेरे मन मीत। और रेडियो स्टेशन का जो चैनल है वो बिल्कुल वही आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। और मैं हूँ आपके साथ ऋतिका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। राखी आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा कार्यक्रम लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ, और अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि

0: हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: विद अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में सीबीएसई की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

अमृत फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दिन भर दिमाग में न जाने कितनी बातें उलझती रहती हैं, कुछ बीती हुई, कुछ आने वाले कल की और कुछ ऐसी जिनका कोई जवाब नहीं होता। मगर रात होते ही जैसे मन की सारी हलचल थमने लगती है। दिल और दिमाग दोनों बस थोड़ा सुकून चाहते हैं, एक ऐसी खामोशी जहां कोई सवाल ना हो, कोई चिंता ना हो, बस नींद हो, चैन हो और अपने आप से कुछ पल की मुलाकात हो।

प्रेम गीत फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश बाडकर की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया जगजीत सिंह ने। दिन भर की उलझनों के बाद जब रात अपने आंचल में खामोशी समेट लेती है तब एक मधुर गीत जैसे मन पर ठंडी फुहार बनकर उतरता है। कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो बिना कुछ पूछे हमारे मन की बात समझ लेती हैं। कभी कोई गीत पुरानी यादों तक ले जाता है, कभी चेहरे पर मुस्कान ला देता है और कभी मन के बोझ को थोड़ा हल्का कर देता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है।

वारिस फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज में। वर्मा मलिक ने इसे लिखा और संगीत दिया उत्तम जगदीश ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 50 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह शाम। इन पंक्तियों में आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि उस शख्स की तस्वीर भी संजोए है जो हर सुबह शाम दिल की आंखों में बसा रहता है। नजरों के सामने ना होकर भी वो हर पल सामने सा लगता है, जैसे दर्पण में अपनी ही परछाई के साथ किसी अपने की झलक दिखाई दे जाए। आरोप फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा माया गोविंद ने और संगीत दिया भूपेन हजारिका ने।

लावा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले, किशोर कुमार और मनमोहन सिंह की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:46 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

तेरी कसम फिल्म का गाना आपने सुना अमित कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। कहते हैं ना, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमें मिलती है, जिंदगी तो वैसी बन जाती है जैसा हमारा नजरिया उसे देखने का होता है। रास्ते में मुश्किलें होंगी, कभी कदम लड़खड़ाएंगे, कभी मंजिल दूर नजर आएगी और कभी लगेगा कि सफर कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। लेकिन ऐसे ही पलों में अगर हम चेहरे पर मुस्कान और होठों पर कोई प्यारी सी

अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक एक बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी तोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में सीबीएसई की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्ले ऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over PM Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing yesterday on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representatives talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and foreign minister, Wang Yi, scheduled today. Announcing the special representative talks at a meeting briefing yesterday, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Yan said, Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. The central government has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act or CAA and issue citizenship certificates to eligible applicants. Showing a gazette notification issued by the Union Home Ministry, Chief Minister Suvendu

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

वो कौन थी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो यादों में ठहर जाने वाला एक खूबसूरत एहसास बन जाती हैं। ऐसी ही किसी नर्म खामोश और हसीन रात में दिल कह उठता है, जो पल सामने है उसे जी भरकर जी लिया जाए, क्योंकि कौन जाने फिर ऐसा मौसम मिले ना मिले, ऐसी मुलाकात हो ना हो।

संजोग फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली जरूर पड़ जाती हैं, मगर दिल से कभी मिटती नहीं। फिर किसी शाम कोई पुराना गीत सुनाई देता है और लगता है जैसे बीता हुआ कल अचानक लौट आया हो। वही चेहरे, वही मुलाकातें, वही अधूरी सी बातें, सब कुछ एक पल में यादों की किताबों के पन्नों से निकलकर सामने आ जाता है और फिर दिल खामोशी से कह उठता है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। सच्ची तो है, पुराने गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो हमें हमारे बीते हुए कल से मिला देते हैं।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कभी कभी दिल की राह पर चलते हुए इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब मोहब्बत उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन बन गई। फिर दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दिल अपनी ही धुन में मगन रहता है। और जब प्रेम अपने पूरे रंग में उतर आए तो इंसान से बस यही गुजारिश होती है कि मेरी इस दीवानगी को मेरी भूल मत समझना, मेरे प्यार को कोई इल्जाम मत देना।

दो बदन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 37 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथ ही फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। दिन भर जिंदगी हमें अपने साथ दौड़ाती रहती है, दिमाग में काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, बीती बातें और आने वाले कल की फिक्र, न जाने कितने ख्याल एक साथ चलते रहते हैं, मगर रात की खामोशी में जैसे मन धीरे धीरे इन सबसे किनारा करने लगता है, तब न किसी से कुछ कहना होता है, न किसी को कुछ समझाना, बस दिल चाहता है कि कुछ पल आंखें बंद हों और भीतर पसरा शोर थम जाए। शायद इसीलिए रात सिर्फ सोने का वक्त नहीं होती, ये खुद से मिलने और सुकून तलाशने का वक्त भी होती है।

तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और जब रात, खामोशी और कोई प्यारा सा फिल्मी गीत साथ हो तो लगता है जैसे दिन भर की सारी थकान धीरे धीरे घुल रही हो और दिल को वही सुकून मिल रहा हो जिसकी उसे पूरे दिन तलाश थी।

और संगीत या एसडी बर्मन ने। दिन ढल जाए रात ना जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। कुछ शामें जाने क्यों इतनी लंबी हो जाती हैं, सूरज तो ढल जाता है मगर इंतजार की घड़ियां नहीं ढलती। रात गहराती जाती है और दिल बस यही सोचता रहता है, शायद अब तुम आ जाओ, शायद अब इस तन्हाई को तुम्हारी आहट मिल जाए। लेकिन जब कोई नहीं आता तो साथ रह जाती है बस उसकी यादें, और फिर वही यादें रात भर दिल को जगाए रखती हैं।

जुएल थीफ फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:52 और ठीक 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले दो महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने दो बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नौवें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी का एआई के जरिए विश्लेषण किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

0: बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में सीबीएसई की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। भारतीय टीम 7वें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation, and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. S. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over PM Modi's personal message to Putin. Dr. S. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing yesterday on a 2-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representatives talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and foreign minister Wang Yi scheduled today. Announcing the special representatives talks at a media briefing yesterday, Chinese foreign ministry spokesperson Lin Yan said Mr. Doval and Mr. Yang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. The central government has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act or CAA and issue citizenship certificates to eligible applicants. Showing a gazette notification issued by the Union Home Ministry, Chief Minister Suvendu Adhikari told reporters at state headquarters yesterday that 23,000 people have so far been recognized as eligible and issued citizenship certificates out of around 2,30,000 applicants. He said the remaining applications would be processed quickly and the certificates would be handed over through the respective district magistrates. The Chief Minister urged people who had fled away from Bangladesh due to religious persecution

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में

सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात किधर भी है।

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरि ने। ये कहां आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, इस पंक्ति में प्रेम की वो खूबसूरत हैरानी है जहां दो लोग साथ चलते चलते कब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे कोई सफर मंजिल के लिए शुरू हुआ था मगर रास्ते में ही साथ इतना प्यारा लगने लगा कि अब मंजिल से ज्यादा उस हमसफर की अहमियत हो गई।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।

0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आंधी फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है।

मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 54 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये पंक्ति जिंदगी की उस सच्चाई को बहुत खूबसूरती से कहती है कि इंसान को सब कुछ एक साथ शायद ही कभी मिल पाता है। किसी के पास प्यार होता है तो सुकून कम, किसी के पास दौलत होती है तो अपनापन कम, और किसी के पास रिश्ते होते हैं तो समय कम।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने गाना सुना, भूपिंदर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। वक्त हुआ है 2:46 और ठीक 31 सेकंड, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप हैं मेरे साथ और सुन रहे हैं रात सुरमई।

त्रिशूल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। ओ सनम हम दोनों साथ रहें जन्म जन्म, इस भाव में दो दिलों की वही मासूम ख्वाहिश है कि वक्त बदलता रहे, मौसम बदलते रहे, मगर साथ और अपनापन यूं ही बना रहे।

लावारिस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। अनजान ने लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुरभि सक्सेना के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। ये अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: विद अ लार्ज डोमेस्टिक मार्केट।
0: शिक्षा

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही। कहते हैं कि मोहब्बत को हमेशा लफ्जों की जरूरत नहीं होती, कभी एक नजर, कभी एक मुस्कान और कभी बस एक छोटा सा इशारा दिल की पूरी बात कह जाता है। तो इस खूबसूरत रात में अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा शख्स है जिसकी एक झलक की आपकी शाम को, आपकी रात को, आपके पूरे जीवन को हसीन और खूबसूरत बना देती है, तो आज एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है कि वो मुझको आंख भर कर देखता है, वो मुझको आंख भर कर देखता है, बड़ी हसरत से खंजर देखता है, ना कोई देख सकता है वहां तक जहां तक एक शायर देखता है। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए, याद कीजिए उस चेहरे को और सुनिए इशारा फिल्म का ये गीत रफी साहब की आवाज में।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कहते हैं कि किसी की आंखों में अगर सच्ची मोहब्बत उतर आए तो बिना कुछ कहे भी दिल की सारी बातें बयां हो जाती हैं, और कुछ नजरें ऐसी होती हैं जिसमें वो शरारत भरी होती है, वो प्यार होता है, वो कशिश होती है कि नजरें चाहकर भी हट नहीं पाती। और शायद इसी एहसास का नाम है इश्क, जहां एक नजर दिल को बेचैन कर देती है और एक मुस्कान जिंदगी को खुशनुमा बना देती है। तो चलिए सुनते हैं ऐसी ही खूबसूरत शरारत भरी आंखों को मुस्कुराहट को याद करते हुए एक ऐसे गीत की तरफ आपको लिए चलते हैं जिसे आवाज दी है मुकेश साहब ने और फिल्म है जंगली।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं सुरभि आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि बड़ी मासूमियत से सादगी से बात करता है, बड़ी मासूमियत से सादगी से बात करता है, मेरा किरदार जब भी जिंदगी से बात करता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि जान लूँ उसको, लेकिन मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि उसको जान लूँ, लेकिन वो मिलने पर बड़ी कारीगरी से बात करता है, बड़ी मासूमियत से सादगी से बात करता है, मेरा किरदार जब भी जिंदगी से बात करता है।
1: मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है,

संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं हमराही और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने, हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने, हमको सिखाया वक्त ने तुमको किताब ने, इस दिल में बहुत देर तक सनसनी रही, पन्ने यूं खोले याद के सूखे गुलाब ने, हालात ने हर रंग को बदरंग कर दिया, सौंपे थे जो भी रंग हमें आफताब ने, हर एक राज कह दिया बस एक जवाब ने, हमको सिखाया वक्त ने तुमको किताब ने।

ने दो झील एक चांद खिले फूल तितलियां, क्या क्या छुपा रखा था तुम्हारे नकाब ने, क्या क्या छुपा रखा था तुम्हारे नकाब ने।

वो सर फरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, वो सिर फरी हवा थी संभलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था जलना पड़ा मुझे। महसूस कर रहा था उसे अपने आसपास, अपना ख्याल खुद ही बदलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था जलना पड़ा मुझे। सूरज ने छुपते छुपते उजागर किया था तो, लेकिन तमाम रात पिघलना पड़ा मुझे, मैं आखिरी चराग था जलना पड़ा मुझे। जी हाँ, इसी के साथ हमराही का ये सफर

यहीं तक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। हमारी आपकी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरे, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। ये यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को संपन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
1: इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: स्ट्रॉन्ग पिक्चर ऑफ कोऑपरेशन टू प्रेजेंट।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
3: We are a young country.
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: With a large domestic market.
0: मिजोरम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। 2 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी और सरकारी कामकाज पर चर्चा होगी। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे कर रहा है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। यूपीआई अब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं लव स्टोरी फिल्म के इस गाने के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया। मैं बहुत खुश था कड़े धूप के सन्नाटे में, क्योंकि तेरी याद का बादल मेरे सर पर आया। चांद इस घर के दरीचों के बराबर आया, दिले मुश्ताक ठहर जा वही मंजर आया।

अरुणिमा, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। खैर, औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, खैर औरों ने भी तो चाहा है तुझसा होना, ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना। देखता और न ठहरता तो कोई बात भी थी, जिसने देखा ही नहीं उससे खफा क्या होना। तुझसे दूरी में भी खुश रहता हूँ पहले की तरह, बस किसी वक्त बुरा लगता है तन्हा होना। खैर औरों ने भी चाहा तो है तुझसा होना, ये अलग बात कि मुमकिन नहीं ऐसा होना।

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: वाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का आज दूसरा और अंतिम दिन है। सम्मेलन में आज ड्रोन और अन्य हवाई प्रणालियों से जुड़े खतरों, उनसे निपटने के उपाय, समुद्री अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, सूचना युद्ध और जैव सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सम्मेलन के पहले दिन श्री शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। वे कल चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे थे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर रवाना होंगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। वे कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानिया के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद अमरीका दौरे में श्रीमती सीतारामन शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क जाएंगी। यह यात्रा अगले महीने की 2 तारीख को सम्पन्न होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान की राजस्व के सभी संभावित रास्तों को खोलना है। उन्होंने दूसरे देशों को भी चेतावनी देते हुए ईरान के साथ आर्थिक संबंध सीमित रखने को कहा है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमरीका की चेतावनी को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को रोकने की स्थिति में नहीं है। श्री गालिबाफ ने कहा कि ईरान के व्यापारिक साझेदारों ने भी अमरीकी बयानों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने के लिए नई प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में खेलो भारत अभियान पर भी चर्चा की गई। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुआ यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन गया है। यूपीआई अब भारत के साथ साथ दुनिया की कई देशों में भी डिजिटल भुगतान का माध्यम बन रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया, ग्रीस और मालदीव शामिल हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माही और मध्य महाराष्ट्र में भी आज अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Himakshi Pawar. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. On the first day of the conference, discussions focused on critical aspects of national security, including response to counter-terrorism challenges, fusion analysis and operationalization of intelligence through the multi-agency center, a vision document on narcotics control, detection and deportation of illegal migrants, a policy framework to combat cybercrime and proxy warfare by Pakistan. On the second day today, the conference will focus on the threat landscape from sub-aerial systems and formulating countermeasures, securing the blue economy, information warfare and its implications on national security and the need for a biosecurity framework. Pursuant to the directions of Prime Minister Narendra Modi, the conference is being held every year in a hybrid format since 2021 with the objective of finding solutions to major national security challenges using the extensive experience of cutting-edge officers working at the grassroots level in collaboration with domain experts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Russian President Vladimir Putin at Kremlin yesterday. The meeting focused on bilateral trade, economic cooperation and upcoming high-level summits. Indian Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary Mayank Singh were also part of the delegation. During the meeting, Dr. Jaishankar highlighted the strong and growing India-Russia partnership, particularly in economic cooperation, trade and energy. He conveyed Prime Minister Narendra Modi's greetings and handed over PM Modi's personal message to Mr. Putin. Dr. Jaishankar described the outcome of the Intergovernmental Commission meeting as positive.
2: Our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. Overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit, and in due course, as per your mutual convenience, having the annual summit. So we have a very strong picture of cooperation to present.
1: Speaking during a meeting, Russian President Putin offered to increase fertilizer supplies to India, saying Moscow is taking steps to support Indian farmers and the country's agricultural sector. He also highlighted the growth in trade between Russia and India this year. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will undertake an official visit to Canada and the United States from today. The Finance Ministry said the focus of the visit will be on strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages, and advancing cooperation on shared global economic priorities. National Security Advisor Ajit Doval arrived in Beijing yesterday on a two-day visit to China. He will take part in the 25th round of special representatives talks between the two countries on the boundary issue with his Chinese counterpart and Foreign Minister Wang Yi scheduled today. Announcing the special representatives talks at a media briefing yesterday, Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Yan said Mr. Doval and Mr. Wang will have an in-depth discussion on the boundary issue as well as other bilateral, regional and international relations. The government has lifted export restrictions on wheat flour and related products, opening the way for overseas shipments of atta, maida, semolina and other wheat-based products. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said new sanctions aim to block all potential sources of revenue for Iran, warning countries to cut economic ties with Tehran or face retaliation. Speaking at a news conference, the U.S. Secretary said it is no longer acceptable to operate in the gray spaces of the conflict. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। नमस्कार।

भोर सुहानी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बहुत ही खूब लिखा है किसी ने कि इन मौसमों में नाचते गाते रहेंगे हम, इन मौसमों में नाचते गाते रहेंगे हम, हंसते रहेंगे शोर मचाते रहेंगे हम। निकले तो इस तरह कि दिखाई नहीं दिए, डूबे तो देर तक नजर आते रहेंगे हम। लब सूख क्यों न जाए, गला बैठ क्यों न जाए, दिल में है जो सवाल उठाते रहेंगे हम। हंसते रहेंगे शोर मचाते रहेंगे हम, इन मौसमों में नाचते गाते रहेंगे हम।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इन

इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।